आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्माता नाइट्स एंड लव रंजन की नई फिल्म का जो है वो पहला लुक जो है वो जारी कर दिया है। मशहूर डायरेक्टर लव रंजन ने अपनी नई फ्रेंडशिप कॉमेडी फिल्म पहला प्यार दूसरी बार का रंगा बिरंगा पहला पोस्टर रिलीज कर दिया है। इस फिल्म में वो 6 नए चेहरों को बॉलीवुड में लॉन्च कर रहे हैं और इसका ट्रेलर जो है वो 21 सितंबर को आने वाला है। तो ये जो है पहला प्यार दूसरी बार, मतलब नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है यार कि मतलब वो एकदम पुरानी मूवीज़ नहीं हुआ करती थी जिनके अजीबोगरीब नाम हुआ करते थे, वो टाइप में फिल्म लग रही है। फिलहाल कैसे चल रही है आपके आज की शाम? मौसम के बारे में बात करूँ तो मौसम काफ़ी अच्छा है। इस अच्छे मौसम में एक कप कड़क चाय या फिर अच्छी खासी झंझनादी कॉफ़ी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स, पक्का देसी पक्का लोकल।

कौन भी कह रहा होगा, लग रहा हूं ना मैं जैसा मैं था. एग्जैक्टली यार, मतलब आईफोन का ऐसा हो चुका था ना, प्राइजेस इतनी कम हो चुकी थी कि हर कोई दूसरा शख्स आईफोन खरीद रहा था. और उसके बाद आईफोन एक कॉमन चीज़ हो गई थी जो पहले आईफोन आया करते थे. 2012 के टाइम की बात कर रहा हूँ. तब ऐसा रहता था कि बहुत लिमिटेड लोग जो अफोर्ड कर सकते थे वही खरीदते थे. लेकिन इतने में, हाल ही में, बहुत लोग खरीद रहे थे. तो आईफोन भी अब कह रहा होगा, अच्छा हो गया, अब मेरा कुछ रेपुटेशन रहेगा मार्केट में, लग रहा हूँ ना जैसा मैं था. वैसा ही तो यार, अच्छा है अभी, मतलब अच्छा हो गया, मतलब टेक्निकली देखा जाए तो अच्छा हो गया. आईफोन की प्राइजेस जो है वो बढ़ रही है. मतलब एक जो डिफरेंस है आईफोन और बाकी के फ़ोन यूजर्स में, वो दिखाई देगा, दिखना ज़रूरी है. इन्जॉय करते हैं अगला ही गाना.

सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स और मौसम का हाल तो सुनिए जनाब। तो हाल यू है कि आपके लिए एक और अच्छी खबर मैं लेकर आया हूँ कि आज और कल पूरे ट्रायंगल इलाके में मौसम बेहद सुहाना और खुशनुमा रहने वाला है। हल्की धूप और ठंडी हवाओं के साथ शाम की वॉक का मज़ा ज़रूर लीजिएगा, और इस वॉक के दौरान आपके साथ कोई ऐसा पर्सन हो जिसे आप प्यार करते हैं, हाथों में हाथ थामे आप वॉक कर रहे हो, तो बात ही कुछ और है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, है ना। ये गाना सुनने का मज़ा इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या आपका कोई पार्टनर है जिन्हें आप वॉक पे लेना चाहते हैं लेकिन आप उनसे बात नहीं कर पा रहे, तो मेरे थ्रू ये बात आप उन तक पहुंचा सकते हैं। एंजॉय करते हैं अगला ये गाना, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: एंड एकता कपूर और तमन्ना पहुंची बिहार। आप सुन रहे हैं रेडियो नारा पंडित वाला नाइट्स। फिल्म मेकर एकता कपूर अपनी आने वाली हॉरर थ्रिलर फिल्म द वन फोर्स ऑफ द का प्रमोशन करने के लिए बिहार के 400 साल पुराने वन देवी मंदिर पहुंची। उनके साथ फिल्म की लीड जो हीरोइन है तमन्ना भाटिया भी थी, जिन्होंने वहाँ पूजा अर्चना की, फैंस से मुलाकात की। एंड इट्स लाइक बहुत दिनों के बाद एकता कुछ कंटेंट लेके आ रही है कसौटी जिंदगी की। आपको अगर याद होगा तो एकता कपूर की कसौटी जिंदगी की, मतलब के नाम से जो भी 96 किड रिलेट कर पाएगी सीरीज शुरू होती थी वो मोस्टली एकता कपूर की रहती थी। एंड उनमें जो ड्रामा हुआ करता था, फिर चाहे वो अनुराग बासु हो, प्रेरणा हो, कमोलिका हो, यूडी हो, बहुत सारे कैरेक्टर उन्होंने डिज़ाइन किए थे। बहुत ही अच्छा ये दौर हुआ करता था सीरियल के लिए। अब तो वेब सीरीज़ का ज़माना है, लेकिन सीरियल के टाइम में 90s किड ने बहुत मज़े किए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडित।
1: दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

एंड बहुत दिनों से हम एक चीज पर रेगुलरली डिस्कशन कर रहे हैं, वो है स्कूलों में एसी की भारी प्रॉब्लम। अत्यधिक गर्मी के कारण ट्रायंगल क्षेत्र के कई स्कूलों का एयर कंडीशनिंग HVAC सिस्टम जो है वो ख़राब हो गया है। धर्म के हिलसाइड हाई स्कूल और कैरी के ग्रीन लेवल हाई स्कूल में तापमान बहुत बढ़ने की वजह से बच्चों को समय से पहले ही घर भेजना पड़ रहा है या दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ रहा है। पूरे वेक काउंटी के लगभग एक तिहाई स्कूलों में एसी की दिक्कतें जो है वो आ रही है। समस्या का समाधान जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि बच्चे रहते हैं यार, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मौसम भी उमस भरा है, गर्मी भरा है, तो एसी की दिक्कत इट्स अ वेरी मैंडेटरी थिंग जो आनी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इंजॉय करते हैं अगला ये गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो 91.1 नाइट से। एंजॉय किया आपने ये गाना, गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। तो मेरा कुछ सवाल है आपसे कि क्या आप रैली में रहते हैं? अगर हाँ तो हाल ही सूखे के बाद जो है पानी बचाने का नियम तो ढील कर दिया, लेकिन अलग नियम मैं कह रहा हूँ आपको। अगर आप रैली में रहते हैं तो अब नगर निगम आपके घर के बाहर खुले में पड़े सूखे पत्तों का ढेर नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा। ढेर चाहे ढेर सारा हो या ढेर चाहे कम हो, उठाया नहीं जाएगा। अब पत्तों को साफ करने के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। नए नियम क्या है इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन अब पत्तों का ढेर नगर निगम नहीं उठाएगा, ये चीज़ है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्माण नाइट्स, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाण नाइट। तो नियम कुछ इस प्रकार है कि नियम नंबर एक, बीन में डालो। आप अपने सूखे पत्तों को हरियाली वाले कचरे के डिब्बे में, मतलब हरे रंग के यार्ड वेस्ट कार्ट में भरकर रख सकते हैं, रैली लीफ कलेक्शन FAQ जिसे कहा जाता है। अब ये कचरा हर हफ्ते उठाया जाएगा, डेली बेसिस पे नहीं उठाया जाएगा। बैग में भरो। अगर पत्ते डिब्बे से ज़्यादा है तो आपको उन्हें बायो डिग्रेबल पेपर बैग, मतलब कागज के सड़ने वाले थैलों में भरकर डिब्बे के बगल में फुटपाथ पर रखना होगा। आप एक बैग, मतलब एक बार ज़्यादा से ज़्यादा 15 बैग रख सकते हैं। ये बैग आपको खुद बाजार या हार्डवेयर स्टोर से खरीदने होंगे, है ना। और भी कुछ नियम है, बताता हूँ आगे, सुनते रहिएगा रेडियो नायरा।
1: हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में, क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू? What happened?

0: मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

की आईफा अवार्ड्स एक बार फिर अबू धाबी के आइलैंड में आयोजित होने जा रही हैं। इस शानदार समारोह में सलमान खान और शाहरुख खान समेत कई बड़े सितारे जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। मैं यही कह रहा था कि आईफा का जो अवार्ड रहता है पुराने यार 90s के किड भी रिलेट कर पाएंगे। अवार्ड फंक्शन में जिस तरह के सेलिब्रिटीज़ के डांस हुआ करते थे, फिर वो सलमान खान का स्वैग हो या शाहरुख खान की एंकरिंग हो, मतलब ये बहुत ही अलग लेवल पे होता था। एंड उसके बाद तो लाइक आईफा का क्रेज़ अब तक कायम है। आईफा और वो भी दुबई में, मतलब मज़ा आने वाला है ना। तो कैसे चल रही है आपकी आज की शाम? आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा 91.9 नाइट्स। एंजॉय करते हैं अगला गाना।

आपने एंजॉय किया ये गाना गाना था, वाकई में काफी ब्यूटीफुल जिसे सेट कर रखी है इस शाम की वाइब। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। तो थैंक यू सो मच रेडियो नायरा एंड निर्वाणा नाइट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। आप हमारे रेडियो नायरा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल प्ले स्टोर से। कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली टाइप करना है रेडियो नायरा, देन आपको मिलेगा ऐप। ऐप मिलने के बाद आप एंजॉय कर सकते हैं हमारे आरजेस के शोज एंड एंजॉय कर सकते हैं अनलिमिटेड म्यूजिक देश और दुनिया के किसी भी कोने से। बस शर्त इतनी सी है कि आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को कि आप रेडियो नायरा को एंड निर्वाण नाइट्स को इतना सारा प्यार देते हैं, एंड ऐसा ही आपका प्यार जो है वो बरकरार रखिएगा हमेशा के लिए। आप लिसनर्स की वजह से तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। एंजॉय करते हैं, अगला गाना बने रहेगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनाया पर निर्वाणा नाइट्स एंड रणबीर जो है वो उनकी फिल्म में काफ़ी बिजी है, रामायण का उनका जो मूवी आने वाला है फर्स्ट पार्टी काफ़ी बिजी रहने वाला है एंड उसमें काफ़ी शानदार तरह के VFX जो है वो भी हमें देखने मिलेंगे। कुछ चीज़ें मतलब ऐसा हुआ कि सीता जो नज़र आ रही है साई पल्लवी, तो सीता के पीछे उनकी बहन का एक किरदार एक एक्ट्रेस निभा रही है, उनका चेहरा इतना हाईलाइट हो चुका था कि लोग उनकी इस खूबसूरती की तारीफ करने लगे। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि सीता का किरदार जो है वो साई पल्लवी ने तो निभाना ही नहीं चाहिए, उनके पीछे उनकी जो बहन का किरदार निभा रही एक्ट्रेस है उन्होंने निभाना चाहिए। उसके बाद ऐसा हो रहा है कि उनका चेहरा जो है ब्लर कर दिया गया है, साई पल्लवी का चेहरा थोड़ा लाइमलाइट में लेके आ रहे हैं। तो क्या वाकई में जनता खुश रहेंगी इससे? क्या आपको भी लगता है कि जो सीता मैया का किरदार है वो किसी और ने निभाना चाहिए था? लाइक आई डोंट नो, लाइक आप

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। एंड कभी कभी क्या होता है कि अपने आप के लिए भी एक वक्त निकालना चाहिए। आपकी प्लानिंग्स क्या है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, सोचना चाहिए। अकेले में टाइम स्पेंड करना, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना, खुद के लिए टाइम देना, ये बहुत ज़रूरी है। दरअसल हम ये भूल जाते हैं या कर नहीं पाते हैं कि आज इसके साथ जाना है, आज उसके साथ जाना है। खुद से कब मिलोगे? खुद से मिलना तो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेल, 7 से 10 का ये टाइम आप लोगों के साथ बातें करते करते कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। कल मिलूंगा आपको रेडियो नायरा के निर्वाणा नाइट्स इसी शो पे। 7 से 10 मेरा ये शो रहता है। एंड अगेन मैं यही कह रहा था कि मिलिए खुद से, अपने आप से मिलना बहुत ज़रूरी है। और रिलैक्स करो यार, हर दम ज़रूरी नहीं है कि पार्टी मूड में ही रहे। कभी कभी रिलैक्स करना, अपने आप से मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham.

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी।

रेडियो सिटी पर सुनिए द हम्मा सॉन्ग, संग बाय जुबिन नौटियाल, शाशा तिरुपति, कंपोज्ड बाय ए आर रहमान, रिक्रिएटेड बाय बादशाह एंड तनिष्क, एंड रिटन बाय महबूब।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

0: For exciting updates, subscribe to youtube.com/wiref.
1: अंश, अंश जल्दी आ। क्या हुआ? अरे जल्दी आना।
2: ये देख, ये तेरा एक्स है ना, इसका नया वीडियो आया है।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham,

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

RCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham,

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4, 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल।

तेरे दोनों कान आज भर रहा हूं, तुझे शिव के द्वार पर कर रहा हूं। सुन, जो डमरू में गूंजे वो स्वर नहीं, स्वयं महादेव की पुकार है।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 90 AM, पक्का देसी पक्का लोक।

सुनते रहिए रेडियो नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल नहरा 101.9 एफएम 99.9 एफएम एसडी 4 1490 एएम पक्का देसी पक्का लोकल

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

Good morning. Hello. Hi. Namaste. I am back on 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM and 99.9 FM HD3 for Telugu. Naira se main hu aapki apni Monica aur aap sun rahe hain Triangle Dunes and Talk. Well, good morning. Morning hai ji aur wahi apna purana routine shuru hai. Ghar se office, travel, work aur bhai kaam ka tension. But fake not, aapke day ko relaxing banane ke liye main aapko Triangle ki special masaledar khabrein sunane wali hu. और ऑब्वियसली मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है. वैसे अभी तक ढेर सारी गपशप चल रही थी आपकी हमारे दोस्तों के साथ और नाउ मेरी बारी है आपको एंटरटेन करने की. सो गेट रेडी, मैं ढेर सारी इवेंट अपडेट आपको देने वाली हूँ और हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल होने वाली है सब कुछ आपको बताने वाली हूँ. इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मॉनिका के साथ रेडियो नायरा, पका देसी पका लोकल.

0: We are delighted to bring our play.
1: Jaane Pehchaane Anjaane.
0: Can you be together, all of you?
2: Jaane Pehchaane Anjaane.
0: Dedicated superstars of this play are saying Jaane Pehchaane Anjaane, and our tour starts from 5th in Houston. Our friend Rajender of Star Promotion is bringing this play to various cities. A lot of cities are booked, and there are certain cities which are going to be still. And if you have any issue, if you have a problem, please look at the number. And call up and bring this play to your city. The play deals with togetherness and different generations. It's music by
3: Anumalai.
4: And lots of laughter.
0: Lots of laughter.
4: Lots of emotions.
3: Lots of tears.
0: She also speaks in between. She is everybody. My name is Anupam Kher.
5: I'm Meghna Malik.
6: I'm Swarup Sampat.
7: Maya Sharma.
8: Shraddha Mandale.
9: Amin D'Souza.
10: Gajendra Hire.
9: Writer director Gajendra Hire. I'm Vikas Rawat.
8: Yes.
0: And we are coming to America and to Canada. Rajender ji, jamado.
5: बेसब्री से इंतजार है आप लोगों से मिलने का.
3: जाने पहचाने
5: यूएसए.
0: अपने अलग अलग भाषाओं के लोग आ रहे हैं. बच्चों को शुरू कर कशिर पटका.
4: जरूर आओ जो टिकट लाइन है मजा उसे.
5: राम राम जी. जल्दी से जल्दी मिलन आ रहे हैं थारे घर.
7: अम्मी सब एक साथ आवी थी अमेरिका. आपने सबसे मिले ला
0: अलग अलग भात भात के. और कोई
3: नक्की सुंदर अनुभव. सुंदर एक अनुभव घेऊन जा.
8: लवकर लवकर टिकट बुक करा
9: प्लीज. बन्नी जास्ती जना बन्नी एल्लारू बन रही.
0: अरे वाह. इंडिया विल बी सून इन यूएस एंड कनाडा विद द प्ले
2: जाने पहचाने अनजाने.
11: हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब. मेरा नाम है नायाब मिढा एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो नायरा. एंड गेस व्हाट, आई एम ब्रिंगिंग माय शो राजकुमारी, माय पोएट्री स्टोरी टेलिंग शो राजकुमारी टू रैले दिस अक्टूबर 2nd. कैच मी लाइव एट द गार्नर परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर प्रेजेंटेड बाय ओहो प्रोडक्शंस. टिकट्स जल्दी जल्दी निकल रहे हैं तो ग्रैब योर्स टुडे. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑलरेडी. सी यू देयर. थैंक यू सो मच. जल्दी मिलते हैं कविताओं के साथ कहानियों के साथ.
12: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM पक्का देसी पक्का लोका.

तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा, कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है, कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: At me on the mic, writing what I feel.
1: When was the last time your apartment community had a full-size climbing wall, retro arcade games, and a sports bar? Not just a leasing office and a mailroom. Welcome to Novel Morrisville, located right next to the Weight Competition Center. When you're off the clock, grill out at the outdoor chef stations, relax by the resort-style pool, or recharge at the on-site coffee shop. Enjoy a half-mile trail, a 2,880-square-foot private dog park, and a pet spa, plus modern studio, one-, two-, and three-bedroom homes. For a limited time, receive 10 weeks free base rent, plus an electronic gift card of up to $1,300 when you tour and lease this week only. Visit 909 Athletic Lane in Morrisville. Call 984-465-7758 or explore novelmorrisville.com today. Novel Morrisville, your version of play starts here. Offer available on select homes. Minimum lease term applies. Other costs and fees are excluded. Contact the leasing team for complete offer details.
2: 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? मूवी देखी थी, पाव भाजी खाई थी, पंजी गए थे.
3: रॉन्ग! 2 अक्टूबर को गरबा नाइट है. अरे भूल ही गया. आ डेट तो याद रखवानी छोए. गरबा लवर्स, आर यू रेडी? ऑन अक्टूबर बीजी રિધમ અને રાસ લઈને આવે છે ગરબા નાઇટ. ચણિયા ચોળી અને કેડિયું રેડી રાખો. એપેક્સમાં થવાની છે ફૂલ ઓન ગરબાની ધમાલ. જોઈન અસ ફ્રાઈડે ઓક્ટોબર 2nd એટ 7 p.m. એટ હવેલી એપેક્સ. ડાન્સ ટુ ધી ઇન્ક્રેડિબલ બીટ્સ ઓફ અમૃતા મંકે એન્ડ નિમેશ નગર વિથ લાઈવ મ્યુઝિક, ડિલિશિયસ ફૂડ, ફેમિલી, ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ રાતભર ગરબાની મોજ. Early bird tickets only until September 7th.
4: Tickets on Sulekha or check the Rhythm and Ras flyer on Radio Naira's Facebook, Instagram or RadioNaira.com. One beat, one circle, one community.
5: Naira 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Local.
6: ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एसडी 4090 एएम एंड 99.9 एफएम एसडी 34 तेलुगु नायरा फेम. मैं हूं आपके अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक. हमारे ट्रायंगल में 2060 इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल सेलिब्रेट होने वाला है. इंटरनेशनल ब्लैक थिएटर फेस्टिवल IBTF रोल आउट द पर्पल कार्पेट एवरी अदर समर ट्रांसफॉर्मिंग विंस्टन सलेम इनटू द मेगा परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर विद मोर देन 120 परफॉर्मेंसेस इन नंबर ऑफ द सिटी वेन्यूज. Artists, audiences and industry leaders from across the globe unite for an electrifying week through many stage production, engaging program and cultural exchange. Main stage production ticket will be announced and available for purchase. It's all start. फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं. इनकी और जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट जाके चेक कर सकते हैं और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर. पक्का देसी पक्का लोकल.

ये रोमांटिक गाना आपने एंजॉय किया और 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 49 AM, 99.9 FM HD3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्राइंगल टूल्स एंड टॉक्स, उन खूबसूरती जो नजरों में नहीं तो दिल में बस जाए। पेश है 92.5 सिल्वर ज्वेलरी का शानदार कलेक्शन जिसमें है 22 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग की रॉयल चमक, हर डिजाइन में छुपी है बारीकी और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थरों की अनोखी दमक। चाहे शादी हो या खास दिन हो या कोई त्योहार हो, हर मौके पर आपको दे एक एलिगेंट रॉयल लुक, क्योंकि आप सिर्फ ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, आप पहनती हैं अपनी खुद की पहचान। 9 जेम्स ज्वेलरी, जहां हर गहना बनाता है आपकी खूबसूरती की पहचान। बुक ओनली बाय अपॉइंटमेंट। 9 जेम्स ज्वेलरी, वेस्ट कैरी 27519। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं +1 214 699 9454। फिलहाल कहीं जाइए या नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नागा।

to WCMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4, 4090 AM एंड 99.9 FM HD3 for Telugu, दायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून्स एंड टॉक। पता है बहुत थके आप सुबह सुबह ये वर्कलोड देखकर, बट डोंट वरी, आपको रिलैक्स फील करने के लिए ढेर सारी मस्ती कंटिन्यू रहने वाली है। वैसे आपने कुछ नोटिस किया क्या? नहीं ना, हम बातें और मस्ती करते करते सेकेंड आवर में प्रवेश कर चुके हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। वेल, आपके साथ बातें और मस्ती तो कंटिन्यू चलते रहने वाली है, बट हमारे ट्रायंगल में क्या हलचल हो रही है, कहाँ क्या होने वाला है, कौन से इवेंट होने वाले हैं, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ और ढेर सारे धमाकेदार गाने भी बजते रहने वाले हैं। इसीलिए कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

इस ऑसम ब्लॉसम गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4 फॉर 90 एएम 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल डून सेंटर ऑफ वेल हमारे ट्रायंगल में बहुत जल्दी चेरी पॉइंट एयर शो होने वाला है हेडिंग द 2026 इवेंट इज द रिटर्न ऑफ लेजेंडरी यूएस नेवी ब्लू एंजल्स जॉइंड बाय एक्साइटिंग लाइनअप ऑफ मिलिट्री एंड सिविलियन एक्ट दैट कंटिन्यू टू इंस्पायर एंड कैप्टिवेट फन फेवरेट performances such as jet truck, parachute, jump team and aerobatic pilot and Randy Ball, RJ Glitter and Tom Larkin are already slated to return. The show is free and open to the public throughout the base pass is required for entry. For more information, check their website. Filhal kahin jaiye nahi, sunte rahiye Monica ke saath.

0: Radio Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: ये अमेजिंग गाना आपने एंजॉय किया ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM एंड 99.9 FM, SD3 फॉर तेलुगु। नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक। वेल मॉरिसले रेडी हो जाओ, आपका नया हैंगआउट स्पॉट आ रहा है। इंट्रोड्यूसिंग रचा बांडा फूड ट्रैक, ऑथेंटिक इंडियन स्ट्रीट फूड का असली स्वाद। अब आपके शहर में गर्मा गर्म समोसे, क्रिस्पी डोसा, चपाती चाट एंड फ्लेवर जो सीधा दिल तक जाए। ये सिर्फ फूड नहीं, ये है घर जैसा टेस्ट स्ट्रीट वाले ट्विस्ट में। ग्रैंड ओपनिंग स्पेशल, आओ और पाओ एक सरप्राइज ट्रीट ऑन द हाउस। दोस्तों के साथ चिल करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो या खुद को ट्रीट दो, क्योंकि राचा बांडा में है हर बाइट फील लाइक होम। नाउ अराइविंग इन मॉरिस विलेज, कमिंग सून राचा बांडा, जहाँ टेस्ट भी मस्त और वाइब भी बेस्ट है। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

Yeah. भाई तेरा बस लिख तगाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: इस माहौल गाने के बाद वन मोर टाइम वेलकम है जी ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम एचडी 4.90 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा से मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल टूल्स एंड टॉक्स।
1: बुलेवार्ड ट्रायंगल में बहुत जल्दी पीच पाथवे सेलिब्रेट होने वाला है। वी आर हाइडिंग 20 क्राफ्टेड ग्लास पीचेस अलोंग ट्रायल थ्रू आउट द सैंड हिल एंड इट्स योर जॉब टू फाइंड देम। Each glass of peach is one of a kind of treasure waiting to be discovered, created by friends at Starworks. List up your hiking shoes, grab your friend or family, and hit the trail for this fun. Free adventure celebrating the beauty of nature and spirit of summer in Sandhill. Each day on our live social media will announce trail for the hunt, so stay tuned. Filhal ke liye jaiyega nahi, sunte rahiye Monica ke saath Radio Nayra, pata desi, pata local.

वेलकम है ऑन 101.9 एफएम 99.9 एफएम HD4 4090 एएम 99.9 एफएम HD3 तेलुगु नायरा से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल टून्स एंड टॉक कहा धारा मैंने आपसे की एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होगी। देखा बातों बातों में थर्ड आर में प्रवेश कर गए हैं और स्टिल हमारी बातें कंटिन्यू रहने वाली है। ढेर सारी मसालेदार खबरें ट्रायंगल की कुछ अपडेट्स मैं आपको बताने वाली हूँ, पर अगर आप मुझसे बातें करना चाहते हैं, कुछ कहानियाँ कुछ किस्से शेयर करना चाहते हैं या किसी लव्ड वन को आप बर्थडे विश करना चाहते हैं या सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और 9192944800 पर और सुन सकते हैं ओनली ऑन रेडियो नायरा पर। फिलहाल और एक चाय का कप तैयार कर लीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Nara 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
1: ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM एंड 99.9 FM, SD3 फॉर तेलुगु। नायरा फेम है, हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल रूल्स एंड टॉक। वेल, हमारे ट्रायंगल में 38 नॉर्थ कैरोलिना डक अनलिमिटेड बैंड द बिलफिश टूर्नामेंट होने वाला है। Come experience one of the most exciting and meaningful event on the Crystal Coast, the NCDU Billfish Tournament. More than just a fishing competition, this tournament is a celebration of conservation, sport fishing, excellence and coastal tradition that has made a lasting impact since inaugural year in 1989. This is must-see event as the combined high-level show of sport fishing and powerful conservation mission. Over the 3 years, the big tournament has helped find our billfish protecting effort, working alongside federal agencies to establish minimized size requirement for blue marlin and promoting ethical fish practices that are now standard across East Coast. मजा आने वाला है, मिसमत करिए, जरा एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मॉनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

ये ब्यूटीफुल गाना आपने सुना ऑन 101.9 एफएम, 99.9 एफएम एचडी 4 49 एएम एंड 99.9 एफएम एचडी 3 फॉर तेलुगु नायरा फेम। मैं हूं आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं फाइनल डूज एंड टॉक। विलियम ट्रायंगल में बहुत जल्दी ग्रासी क्रीक एंड जेम मिनरल शो होने वाला है। एक्सप्लोर अ वाइब्रेंट वीक लॉन्ग आउटडोर शोकेसेस ऑफ जेम मिनरल फॉसिल ज्वेलरी एंड लैपिडरी सप्लाई एट द ग्रीसी क्रीक मिनरल एंड जेम शो इन स्प्रूस पाइन। With more than 60 vendors from around the world, this family-friendly event offers something for collector and enthusiasts alike, from stunning gemstones to laboratory tools to unique specimens, hosted by Prayer, Fire and Refuse to support local equipment purchase. The show features free admission and passing on-site food and open to all ages. मजा आने वाला है, मिस मत करिए, जरूर एंजॉय करिए। फिलहाल कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

गाना था ना एक नंबर, मुझे तो मजा आ गया, आपको भी अच्छा लगा ना। वेल 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM, 99.9 FM HD3 for Telugu, Naira से मैं हूँ आपकी अपनी मोनिका और आप सुन रहे हैं ट्रायंगल ड्यून्स एंड टॉक। लगता है मैं अभी अभी तो आई थी और अभी कहाँ जाने का वक्त हो चला है, और फिकर नॉट, आपके एंटरटेनमेंट में और मस्ती में कोई कमी नहीं होने वाली। ये रेडियो नायरा का और मेरा पक्का पक्का आपसे वादा है, हमारे होस्ट और मैं आपको साथ में एंटरटेन करते रहने वाले हैं ऑन 101.9 FM, 99.9 FM HD4 for 90 AM, 99.9 FM HD3 for Telugu, रेडियो नायरा सुन रहे हैं आप। या आप प्ले स्टोर जाके हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं हमारे साथ। वेल, कल फिर मुलाकात होगी इसी वक्त इसी समय ओनली ऑन ट्रायंगल ट्यून्स एंड टॉक पर, ट्रायंगल की स्पेशल मसालेदार धमाकेदार खबरों के साथ। वेल, अगला गाना स्पेशल आपके लिए बजने वाला है, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए मोनिका के साथ रेडियो नायरा, पक्का देसी पक्का लोकल। एंजॉय योर डे, बाय बाय।

GMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 14.

यार ये दृश्यम मूवी ने इतना पागल बनाया था, लाइक कितना सस्पेंस था उसमें. इट वाज सो फन टू वॉच, यू नो. दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. एंड यस, दृश्यम द कंक्लूजन विच इज दृश्यम 3 इज विटनेसिंग स्ट्रॉन्ग एडवांस बुकिंग अहेड ऑफ इट्स रिलीज. एंड अजय देवगन's फैमिली थ्रिलर हैज सोल्ड अराउंड 26,000 टिकट्स अक्रॉस PVR, INX एंड सिनेपोलिस फॉर ओपनिंग डे एज ऑफ 11 PM ऑन September 28, विद सेल्स एक्सपेक्टेड टू सर्ज फर्दर इन द फाइनल स्ट्रेचेज एंड द October 2 नेशनल हॉलीडे प्रोवाइडिंग एंड एडेड बूस्ट. द फिल्म इज करेंटली फोरकास्ट टू ओपन एट अराउंड ₹55 crore नेट विद strong overseas advances as well. So get excited for the final conclusion of this movie Drishyam, and now enjoy all the upcoming songs only on Naira.

यार कभी कभी रूल में चलना पड़ता है, बट मुझे लगता है कि रूल ब्रेकर आर द अमेजिंग वंस, है ना? दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद नी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. एंड यू नो, स्वरा भास्कर वॉज वंस बिलीव्ड मैरिज माइट नॉट हैपन फॉर हर, बट शी वॉज सर्टन शी वॉन्टेड टू बिकम अ मदर. स्पीकिंग टू राइज एंड फॉल सीजन 2, द एक्ट्रेस रिवील दैट शी हैड डिस्कस्ड IVF विद हर पेरेंट्स एंड वॉज प्रिपेयर टू हैव अ बेबी विदाउट गेटिंग मैरिड. स्वरा फर्दर रिवील दैट शी एक्चुअली अंडरवेंट 2 राउंड ऑफ IVF यूजिंग एन अनोनमस डॉटर, बट नीदर वॉज सक्सेसफुल एंड सेड, यू नो, आई डिड 2 राउंड ऑफ IVF अनोनमस डोनर एंड हुआ नहीं. शी लेटर मेट फहद अहमद in January 2020 at a protest against the Citizenship Amendment Act in New Delhi. Recalling how quickly their relationship progressed, Swara said, "We hooked up like immediately. It was insane. We got married in a court. We had a court wedding. Like basically, 2-3 khushkhabri hame saath mein mil gayi." So cute, yaar. Life can be so uncertain and so amazing at the same time. Stay tuned for more.

0: साल नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।
1: हाँ, ये कच्चिमणा चिवा चिवला माझा साजण जागा झाला हो सूर्य उगवला, ये कच्चिमणा चिवा चिवला।

A great compliment for a girl could be, you look like your father. Also, you look like your mother. ये इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट तो हो ही नहीं सकता. दिस इज बॉलीवुड ब्लिस विद मी भारती ऑन योर ट्यून फ्रिक्वेंसी नायरा. एंड यू नो सारा अली खान शेयर्ड अ हार्टफुल पोस्ट फॉर हर मदर एक्ट्रेस अमृता सिंह ऑन इंस्टाग्राम कॉलिंग हर फॉरएवर इंस्पायर्ड बाय हर मदर. सारा सेड शी वुड बी ग्रेटफुल इवन इफ शी कुड बी 1% एज ब्यूटीफुल एज हर. एंड आई थिंक शी इज जस्ट द रेप्लिका ऑफ हर मदर. शी इज टोटली ब्यूटीफुल लाइक हर ओनली. वेल स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. आई विल बी बैक ओनली ऑन नायरा.

CMC FM Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM WDUR Durham, 1490.

0: Myra 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi. 99.9 Myra mein kho jao Pakka Desi. Hello, hello, hello, people. Pranam, namaste, adab, sat sri akal. Kem chho? Aur ek bahut hi pyara hello. Sorry. Yes, once again, hello, hello, hello, people. Pranam, namaste, adab, sat sri akal. Kem chho? Aur ek bahut hi pyara sa hello. Sab listeners ko, jo is waqt kahin car mein hain, kisi kitchen mein hain, chai bana rahe hain, coffee pee rahe hain, office mein kaam kar rahe hain, ya bas headphone laga kar duniya se thoda sa break le rahe hain. कहीं मैं प्राची और आप सुन रहे हैं सुन जरा रेडियो नारा पे 99.9 एफएम एचडी4 101.9 एफएम और 1490 एएम पर. आज हम स्पेशली कुछ स्पेशल बात करेंगे, कुछ स्पेशल टॉपिक पे. यस, तो क्योंकि कुछ सिंगर्स आज हम कुछ स्पेशल सिंगर को याद करने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी का साउंड ट्रैक बन जाते हैं. आज हम बात करेंगे एक ऐसी आवाज़ की जिसका परिचय देने के लिए नाम भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं बस इतना कहूँ लता जी, तो आपके मन में ऑलरेडी एक आवाज़ गूंजने लगती है ना. 28 सितंबर 1929 इंदौर, उस दिन एक बेटी का जन्म हुआ और जानते हैं उनका पहला नाम लता था ही नहीं, उनका नाम रखा गया था हेमा. बाद में उनके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी ने अपने एक नाटक भाव बंधन करके एक किरदार था लती का, उनके नाम पर उनका नाम बदलकर रख दिया लता. सोचो जरा, एक नाटक के किरदार से आया एक नाम और वही नाम आगे चलकर पूरे देश की आवाज बन गया. आज सुनसरा पर हम सिर्फ एक सिंगर को याद नहीं कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं एक एहसास को, एक ऐसी आवाज को जो माँ के रेडियो से निकली, दादी के कैसेट प्लेयर से निकली, हमारे बचपन की यादों में घुल गई और फिर हमारे फोन्स, प्लेलिस्ट और हेडफोन्स तक पहुंची. ये सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं है, ये हमारी संस्कृति की याददाश्त है. और आज हम लता जी की कहानी को थोड़ा अलग नजरिए से देखेंगे. सिर्फ अवार्ड्स नहीं, सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी कहानियाँ, वो मोड, वो पल जब इंदौर की एक छोटी सी लड़की धीरे धीरे हिंदी सिनेमा की आवाज़ बन गई. और शुरुआत करेंगे गाइड से, 1965 के फिल्म संगीत सचिन देव वर्मा जी का, वो शैलेंद्र जी के. और एक दिलचस्प बात बताऊं, एक ज़माने में एस डी बर्मन जी और लता जी के बीच अनबन हो गई थी. करीब 5 साल तक दोनों ने साथ काम नहीं किया. फिर जब दोनों वापस मिले ना, तो उन्होंने एक ऐसे गाने दिए जो आज तक जिंदा है. गाइड उन्हीं में से एक है, तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम इस सफ़र की शुरुआत एक ऐसे गाने से कर रहे हैं जो लता जी की, जो लता जी की क्या बोलते हैं, जैसे आज़ादी का ऐलान हो, है ना. तो सुनिए ये ब्यूटीफुल सा गाना, आज फिर जीने की तमन्ना है. सुन जरा पर लता मंगेशकर जी की आवाज़ में.
1: हर कलाकार का सफ़र तन्हा शुरू होता है, लेकिन साथ होती है आपकी सद्भावना और आशीर्वाद की मंगल ध्वनि. मैं अकेला

0: Welcome back to Sunzara Radio, not up in 99.9 FM HD4, 101.9 FM or 1490 AM. मैं हूं प्राची. अब जरा एक गलत फहमी को साइड में रखते हैं. जब हम लता जी को याद करते हैं तो लगता है कि शायद उन्हें सब कुछ जन्म से ही मिल गया था, आवाज, मौका, कामयाबी. लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा मुश्किल था. लता जी एक संगीत के परिवार से बिलोंग करती हैं. उनके पिताजी पंडित दीनानाथ मंगेशकर जी एक जाने माने शास्त्रीय सिंगर और थिएटर की बड़ी हस्ती थे. उस घर में संगीत सिर्फ शौक नहीं था, संगीत ही जिंदगी था. लेकिन जिंदगी ने बहुत जल्दी उनका बचपन छीन लिया. 1942 में उनके फादर का देहांत हो गया और लता जी की उम्र थी सिर्फ 13 साल. घर की सबसे बड़ी बेटी, पीछे माँ और 4 छोटे भाई बहन, मीना, आशा, उषा एंड हृदयनाथ. जिस उम्र में लड़कियां स्कूल की फिक्र करती हैं, उस उम्र में लता जी ने कंधों पर अपने पूरे घर की जिम्मेदारी ले रखी. परिवार की करीब जो फ्रेंड्स थे, मास्टर विनायक जी ने उनका हाथ थामा. लता जी ने मराठी फिल्मों में छोटे छोटे रोल किए. हाँ, आपने सही सुना, लता जी ने एक्टिंग भी की थी, क्योंकि घर चलाना था ना. और उनका पहला रिकॉर्डेड गाना 1942 की मराठी फिल्म किती हसल करके था के लिए, लेकिन वो गाना फिल्म से ही काट दिया गया था. सोचो जरा, दुनिया की सबसे मशहूर आवाज में से एक और उसका पहला गाना ही फिल्म में नहीं आया. फिर आए बॉम्बे फिल्म स्टूडियोज, इनकार, बदलती हुई इंडस्ट्री. उस जमाने में हीरोइन की आवाज़ भारी और गहरी होनी चाहिए, ऐसा माना जाता था, और लता जी की आवाज़ पतली, साफ और ऊंची. एक मशहूर प्रोड्यूसर शशद मुखर्जी जी ने उन्हें फिल्म शहीदा के लिए ये कहकर मना कर दिया था कि यह आवाज़ बहुत पतली है. लेकिन एक इंसान थे जिन्होंने उस आवाज में भविष्य देखा, संगीतकार गुलाम हैदर जी साहब. उन्होंने 1948 की फिल्म मजबूर में लता जी से दिल मेरा तोड़ा गवाया. और कहा जाता है कि उन्होंने कहा था, एक दिन यही प्रोड्यूसर्स इस लड़की के पीछे भागेंगे. और वक्त ने उन्हें सही साबित किया. एक और कहानी सुनाती हूँ. एक बार दिलीप कुमार साहब ने मजाक में लता जी के उर्दू उच्चारण पर कुछ कह दिया. लता जी ने बुरा मानकर बैठ जाने के बजाय बकायदा उर्दू सीखी और फिर उनका तल्लफूस जो बोलते हैं ना, इतना साफ हुआ कि वो मिसाल बन गया. बचपन में वो केएल सहगल साहब की बहुत बड़ी फैन थी. उन्होंने अपने से पहले के महान गायकों की इज्जत की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक ऐसी आवाज़ बनाई जो सिर्फ और सिर्फ उनकी थी. और शायद यही उनके सफ़र की पहली सीख है. ओरिजिनल बनने के लिए अलग दिखने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, ओरिजिनल बनते हैं पूरी तरह से खुद बनकर. और अब जो दो गाने हम सुनेंगे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के हैं. कहा जाता है कि लता जी ने किसी और कंपोजर के साथ इतने गाने नहीं गाए जितने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ गाए. चलिए सुनते हैं वो आवाज़ जो मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती गई मेरे नसीब में. जिन्हें कहा गया आवाज़ पतली है, चल नहीं पाएगी, उनकी ही आवाज़ से आज भी हर महफिल सजाई जाती है. I'll be back soon.
1: Healthy living means Indian tradition. Sunte rahiye healthy rehne ki musical parampara. Only on Radio Naira.

वेलकम बैक टू सुनसरा रेडियो नायरा पे 99.9 FM HD4 101.9 FM और 1490 AM पर. मैं हूँ प्राची. वैसे आगे बढ़ने से पहले एक आप लोगों ने देखा ही होगा पोस्टर्स वगैरह, पर फिर भी मैं बताऊँ कि आज रेडियो नायरा पर आ रहे हैं एक खास शो का डिस्कशन करने. शो का नाम है जाने पहचाने अनजाने, और आज शाम 5:30 बजे होस्ट रहेंगे हमारे वैष्णवी जी. उनके साथ होंगे दी अनुपम खेर एंड स्वरूप संपत जी. तो सुनिए उनकी बातें, उनकी कहानियाँ, और हाँ आप उन्हें लाइव कॉल कर सकते हैं. यस, लाइव कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं. तो ट्यून इन कीजिए रेडियो नायरा पर आज 5:30 बजे. ओके, यस. सो भूलना नहीं, कॉल करना, और आप उनके साथ बात भी कर सकते हैं ना. इज़न्ट इट लवली? सो रेडी, बी रेडी विद योर क्वेश्चंस. और हाँ, तो कैसे लगे ये दो गाने लता मंगेशकर के? इज़न्ट इट ब्यूटीफुल? सो अब एक दिलचस्प बात सोचिए. लता जी से पहले 40s में फिल्म के गानों में ज़्यादातर भारी, गहरी, थोड़ी नाक से निकलती आवाज़ें चलती थी. वो आप अपने आप में कमाल की आवाज़ें थी, लेकिन लता जी ने आकर पूरा हिसाब ही बदल दिया. 1949 में फिल्म महल का जो गाना आया था, आएगा आएगा आएगा आने वाला, यस. और उसके बाद हीरोइन की आवाज़ का मतलब ही बदल गया. स्क्रीन पर हीरोइन को भी हो, कोई भी हो, जैसे नरगिस, मधुबाला या मीना कुमारी, वहीदा रहमान, आगे चलकर हेमा मालिनी, रेखा, श्रीदेवी, माधुरी, काजोल, सबकी आवाज़ कौन सी? लता जी की. और धीरे धीरे दर्शकों के दिल में हीरोइन की आवाज़ और लता जी की आवाज़ एक हो गई. ये बहुत बड़ा बदलाव था. उनकी आवाज़ में एक साफ गोई थी, एक जवानी थी, और बिना जोर लगाए जज्बात पहुंचाने का एक अनोखा हुनर. प्यार हो, मासूमियत हो, इंतज़ार हो, खुशी हो, यहाँ तक कि दिल टूटने पर लता जी की एक सीधी सी लाइन को भी बिल्कुल अपना बना देती थी. इसलिए उनका गाना, उनके गाने सिर्फ फिल्म के सीन नहीं रहे, उन वो लोगों की यादें बन गए. आपने भी महसूस किया होगा ना, कहीं लता जी का कोई पुराना गाना बजता है और अचानक कोई इंसान याद आ जाता है. कोई जगह, कोई शादी, बचपन की कोई दोपहर, रसोई में खाना बनाती हुई मम्मा, कोई रोड ट्रिप, या फिर कोई ऐसा जिसका नाम हम लेना ही नहीं चाहते. यही तो संगीत की अजीब ताकत है. गाना याद नहीं रखते, गाना हमारे लिए याद रखता है. और अब

दो गाने जो इस रोमांटिक नज़दीकी वाले लता जी जादू को जो पकड़ते हैं ना, पहला ये 1978 फिल्म का घर से, संगीत आर डी बर्मन बोल गुलजार साहब के और साथ में किशोर कुमार। दूसरा है 1989 की चांदनी से, इसका संगीत दिया था पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी ने, यानी शिव हरि की जोड़ी ने। यस, चेहरे बदलते रहे पर्दे पर हर दौर में, पर दिल ने हर बार एक ही आवाज को पहचाना। सुनिए ब्यूटीफुल से गाने, आपकी आंखों में कुछ, फ्रॉम घर मूवी।

Welcome back to Sansara Radio. Now up at 99.9 FM HD4, 101.9 FM or 49.90 AM. I hope that's it. और मैं वापस आ गई हूँ हमारे लता स्पेशल के अगले चैप्टर के साथ। अब एक पीढ़ी की बात करते हैं, 90s kids। आप लोग तैयार हो ना, क्योंकि अगर आपने 90s में प्यार देखा है तो बहुत चांस है कि लता जी की आपकी लव स्टोरी का भी हिस्सा बनी है। और फिर आए दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 1995, राज, सिमरन, यूरोप, सरसों का खेत, ट्रेन और बैकग्राउंड में लता जी की आवाज। अब जरा हिसाब लगाइए, DDLJ के वक्त लता जी की उम्र थी करीबन 66 इयर्स और वो गा रही थी काजोल के लिए, जो उस वक्त 20 साल की भी नहीं थी। और किसी को एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा होगा राइट कि ये कोई 16-18 ईयर की यंग लड़की के लिए गाया जा रहा है गाना, है ना? कहीं से भी किसी ने पहचाना कि ये 66 ईयर ओल्ड की लेडी गाना गा रही है या बैलेंस नहीं हुआ? नहीं राइट। और जो याद रखने वाली बात वो है कि यश चोपड़ा जी और लता जी का रिश्ता जो था वो बहुत गहरा था। चांदनी से लेकर दिल तो पागल है, मोहब्बतें या और आगे वीर जरा तक यश जी की रोमांटिक दुनिया की आवाज थी लता जी। सोचो जरा, एक सिंगर जिसने अपना करियर 1940s में शुरू किया, वो 90s में भी एक बिल्कुल नई पीढ़ी के प्यार की जुबान तय कर रही थी। ये है लंबी उम्र का असली मतलब। सिर्फ मशहूर बने रहना नहीं रेलेवेंट होता राइट, बने रहना। अब थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया करते हैं, ठीक है? आपकी टीनेज प्लेलिस्ट में यह गाना था या नहीं? ओके, सही बताना, चिटिंग नहीं करना। संगीत जतिन ललित का, बोल आनंद बख्शी साहब के, और कौन सा सॉन्ग गेस किया? यस, तुझे देखा तो ये जाना सनम, मैं साथ है कुमार शानू जी। सो उम्र का हिसाब तो सिर्फ कैलेंडर रखता है, सुर की जवानी को कोई साल नहीं होता, है कि नहीं? सो ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दोनों सॉन्ग्स। एंजॉय दिस, आई विल बी बैक।

0: Welcome back to Sunsara Radio Naira pe 99.9 FM HD 401.9 FM 49 TAM. मैं हूँ प्राची. अगर देसी शादियों का कोई अनऑफिशियल साउंड ट्रैक होता तो उसमें लता जी जरूर जरूर होती. खासकर हम आपके हैं कौन है ना 1994, एक फिल्म जो सिर्फ फिल्म नहीं रही, एक पूरा कल्चर तूफान बन गई. और अचानक लता जी एक और पीढ़ी के परिवार के जश्न के बीच में आ गई. दीदी तेरा देवर दीवाना कितनी शादियों में बजा, कितने कजिन्स ने परफॉर्म किया, कितनी बहनों ने कोरियोग्राफी बनाई, है ना. तो मेरा हाथ तो सबसे ऊपर है. और एक मज़ेदार फैक्ट, इस गाने में लता जी के साथ जो SP बालासुब्रमण्यम जी हैं, और इसी गाने के लिए लता जी को 1994 में फिल्म फेयर का स्पेशल अवार्ड मिला था. अब ये बात
1: You're खास क्यों? You're listening to WCMC-FM, Holly Springs, 99.9 FM HD4, W270 DT Durham, 101.9 FM, WDUR Durham, 1490.

0: Naira 101.9 FM Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM HD4 and 1490 AM Pakka Desi. 99.9 Naira mein kho jao
1: Pakka Desi. Yes, sorry. So मैं बता रही थी कि अब ये बात खास क्यों है, क्योंकि लता जी ने 1970 में खुद फिल्म फेयर के कॉम्पिटिशन से नाम वापस लिया था ताकि नई गायिकाओं को मौका मिले. तो ये अवार्ड सच में स्पेशल था. और जूते दो पैसे लो वाला सॉन्ग याद है ना, कि बात ही मत करो आप वो सॉन्ग की. तो इसमें साथ थे कुमार सानू जी, जूता छुपाना, बहनों की शैतानियाँ, जीजू की हालत, और बैकग्राउंड में 60 प्लस की लता जी की इतनी शरारत भरी जो आवाज़ थी और जिस अदा से उन्होंने गाया था गाना, वाह. लता जी की आवाज़ अब सिर्फ रोमांटिक हीरोइन तक सीमित नहीं थी, वो परिवार का एक जश्न का हिस्सा बन गई. एक शादी की रस्म, छेड़छाड़, बहन का एहसास और बेटी की विदाई भी. यही तो प्लेबैक सिंगिंग की खूबसूरती है. सिंगर स्क्रीन पर दिखता नहीं, लेकिन जिस बात में सिंगर हर जगह होते हैं. तो चलिए फुल वेडिंग मोड ऑन करते हैं और सुनिए ये अमेजिंग सॉन्ग. वैसे मेहंदी की खुशबू, ढोलक की थाप और रिश्तों का मेला, लता जी की आवाज के बिना तो हर जश्न लगता अकेला. वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात.

Welcome back to Sunsara Radio, 99.9 FM, HD4, 101.9 FM और 4090 AM. मैं हूँ प्राची. और अब थोड़ा मूड बदलते हैं, क्योंकि लता जी की महानता का एक और हिस्सा था ठहराव. हाँ, उन्हें हर बार जोर से गाने की जरूरत नहीं पड़ती थी. आपको कुछ महसूस कराने के लिए कभी कभी एक हल्का सा सुर, एक ठहराव, एक सांस और बस दिल समझ जाता था. ये सॉन्ग है ना, ये गलियां ये चौपारा यहाँ आना ना दोबारा. जी हाँ, 1982 राज कपूर जी की फिल्म प्रेम रोग. सिर्फ एक गाना नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए ये गाना एक बेटी के बड़े होने और एक दिन अपनी मायके की गलियां छोड़कर जाने की उलझे हुए एहसासों से जुड़ा है. जो बहनें शादी के बाद परदेश आ गई हैं, उन्हें पता है ये गाना क्या करता है. और फिर जो एक और सॉन्ग था, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम. यस, 1981 एक तुझे के लिए. जवानी, मासूमियत, बड़ा होना, टीनेज के वो उलझे हुए जज्बात, लता जी में एक अनोखा हुनर था मासूमियत को सच्चा बना देने का. और ये तब जब वो खुद 50 के पार थी. शायद इसीलिए उनकी आवाज दशकों तक हीरोइंस की आवाज बनी रही. वो सिर्फ शब्द नहीं गाती थी, वो किरदारों को एक अंदर की जिंदगी देती थी. चलिए उस आवाज के दो बिल्कुल अलग अलग रंग सुनते हैं. दोनों गाने जो संगीत हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के, और आप एंजॉय कीजिए. आती हूँ उससे पहले एक शायरी. चिल्लाने से नहीं चुप रहने से गहरा होता है दर्द. चिल्लाने से नहीं चुप रहने से गहरा होता है दर्द. लता जी ने सिखाया एक सांस भी कह सकती है सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ. है ना? एंजॉय दिस, आई विल बी बैक.

Welcome back to Sunzera Radio Naira Pay 99.9 FM HD 4101.9 FM of 1490 AM पर. So, आज शाम 5:30 बजे वैष्णवी के शो पर खास मेहमान होंगे अनुपम खेर जी और स्वरूप संपत जी. सो वो अपने अपकमिंग प्ले जाने पहचाने अनजाने जो लाइव होने वाला है यहाँ रैले में, उसके बारे में बात करेंगे और आप भी उनसे लाइव कॉल पर बात कर सकते हैं. तो ट्यून इन कीजिए आज 5:30 बजे भी, ओके, रेडियो नायरा पे 99.9 एफएम. वेल, हमारा लता सफर जारी है और लता जी के करियर में एक बात मुझे बहुत कमाल की लगती है, वो बदलती रही. नए कंपोजर्स आए, नए एक्टर्स आए, नई आवाजें आई, नई पीढ़ी आई और लता जी हर बार अपनी जगह ढूंढ ही लेती थी. 1981 की दो फिल्में देखिए, लव स्टोरी कुमार गौरव की पहली फिल्म, रॉकी संजय दत्त की पहली फिल्म, दोनों नए चेहरे, दोनों का संगीत आर डी बर्मन जी यानी पंचमदा का. सॉन्ग था देखो मैंने देखा है एक सपना, यस, में साथ थे अमित कुमार, किशोरदा के बेटे, और क्या यही प्यार है, यस, मैं साथ थे खुद किशोर कुमार. सोचो एक ही साल में लता जी बाप और बेटे दोनों के साथ ड्यूएट गा रही थी. ये 1940s या 50s के गाने नहीं थे, ये बिल्कुल अलग सिनेमा का दौर था, अलग अरेंजमेंट, अलग प्रोडक्शन, अलग यूथ कल्चर, लेकिन वो आवाज फिर भी फिट हो गई. इसलिए संगीत में लंबी उम्र का मतलब सिर्फ टिके रहना नहीं है, मतलब है अपनी पहचान खोए बिना बदलते रहना. और शायद ये बात हम सबको अपनी सी लगती है. जिंदगी बदलती है, हालात बदलते हैं, आसपास के लोग बदलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें खुद के नए रूप ढूंढते रहना पड़ता है. तो चलिए सफर की दो खूबसूरत मिसालें सुनते हैं, ओके? वक्त के साथ चलना सीखो पर अपना सुर मत छोड़ना, नए रास्तों पर भी अपनी पहचान मत तोड़ना, याद रहेगा ना? अब देखो एक सपना.

क्या यही प्यार है? यस, हाँ यही प्यार है। वेलकम बैक टू सुनसरा रेडियो 99.9 एफएम, एचडी 411.9 एफएम और 4090 एएम। मैं हूँ प्राची। अब बात करते हैं हिंदी सिनेमा के सबसे सुनहरे दौर की, राज कपूर जी का कैंप। शंकर जयकिशन जी का संगीत और लता जी के साथ दो महान मर्दाना आवाजें, मुकेश जी और मोहम्मद रफी साहब जी। ओ मेरे सनम 1964 संगम, राइट। इसमें लता जी के साथ मुकेश जी की आवाज़ में एक सादगी थी, उनकी आवाज़ में एक दर्द, लता जी की आवाज़ में एक चमक थी, और दोनों मिलकर गर्माहट प्यार और वो आसानी से बातचीत जैसा एहसास। और फिर रमैया वस्तावैया, है ना, पसंग रमैया वस्तावैया, ऑल टाइम हॉट फेवरेट सबका। 1955 श्री 420 का, इसमें तो तीनों हैं, लता जी, मुकेश जी और रफीजा। एक ऐसा गाना जो आज भी 70 साल बाद उतना ही खुश कर देता है। अब एक काम, एक कम जानी हुई कहानी। 1960s में लता जी ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था। उनका कहना था कि गायकों को भी गानों की रॉयल्टी मिलनी चाहिए। रफ़ी साहब इस बात से सहमत नहीं थे, और इस मतभेद में की वजह से कहा जाता है कि दोनों ने कुछ सालों तक साथ गाना ही बंद कर दिया। सोचो, हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी जोड़ी चुप। फिर बाद में दोनों के बीच सुलह हुई और दोनों ने साथ मिलकर फिर से अनगिनत यादगार गाने हमें दिए। मुझे ये कहानी इसलिए पसंद है क्योंकि ये दिखाती है महान लोग भी इंसान होते हैं ना, असहमति भी होती है लेकिन कला उससे भी बड़ी होती है। और महान प्लेबैक सिंगर्स की एक और खासियत होती है, आपको उनका टेक्निक सुनाई नहीं देता, आपको सुनाई देता है सिर्फ उनका एहसास। जब हुनर इतना गहरा हो जाए कि दिखे ही नहीं, वही कला का सबसे ऊंचा स्टार है। चलिए इस केमिस्ट्री का मजा लेते हैं और ये ब्यूटीफुल सा गाना एंजॉय करते हैं।

वेलकम बैक टू सुन जरा रेडियो 99.9 एफएम एचडी4 101.9 एफएम और 490 एएम. मैं हूं प्राची और अब हम फिर से आगे छलांग लगाते हैं क्योंकि एक बात बहुत कमाल की है. लता जी के आसपास का संगीत बदलता रहा लेकिन फिल्म मेकर्स बार बार उन्हीं के पास लौट कर आते रहे. फिर आई 90s और उसके बाद नई सदी, नए कंपोजर्स, नई आवाज़, नई रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी और फिर भी लता जी की आवाज़ में वो नज़दीकी बनी रही. दिल से 1998 जी अचले जा चले है ना, संगीत ए आर रहमान का, बोल गुलजार साहब के, एक बिल्कुल अलग संगीत की दुनिया, डिजिटल साउंड, नया साउंडस्केप, नई पीढ़ी का कंपोजर और लता जी की उम्र करीब 69. फिर भी वो वहाँ पूरी तरह से फिट थी, बल्कि उस गाने की जान ही वो थी. फिर दिल तो पागल है 1997 है ना, संगीत उत्तम सिंह का ढोलना सॉन्ग, कब तक चुप बैठे हो अब तो कुछ है बोलना, यस, साथ में उदित नारायण जी. और अचानक लता जी एक और पीढ़ी के रोमांटिक शब्दकोश का हिस्सा बन गई. इसीलिए जब लोग कहते हैं लता जी टाइमलेस हैं तो दिलचस्प सवाल यह है कि टाइमलेस का मतलब क्या है. इसका मतलब ये नहीं कि संगीत कभी बदलता ही नहीं, इसका मतलब ये है बदलाव के बाद भी एहसास जो फील है वो जिंदा रहता है. तो चलिए सुनते हैं ये गाना, चिया चली.

Welcome back to Sunset Hour Radio 99.9 FM, HD4 101.9 FM और 4090 AM. मैं हूँ प्राची. So, अब मैं हम दो बिल्कुल अलग, आपको अलग दुनिया में ले जाती हूँ. पहले एक आखिरी बार 90s के रोमांस में दिल तो पागल है का टाइटल ट्रैक लता जी का और उदित नारायण. ये गाना फिल्म के प्यार का आइडियल जो था लगभग दूसरा नाम बन गया था. दिल तो वो गाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, और हम सब ने कभी ना कभी ये बात मानी है. और उसके बाद थोड़ा सा सन्नाटा, थोड़ा सा ठहराव, क्योंकि लता जी की आवाज़ का एक और रूप था, भक्ति का, आध्यात्मिक, लगभग ध्यान जैसा. सत्यम शिवम सुंदरम, कोई नहीं भूल सकता वो सॉन्ग. 1978 का राज कपूर जी की फिल्म, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, बोल लिखे थे पंडित नरेंद्र जी, और जिन्हें लता जी ने अपने पिता समान मानती थी. वो अगर आप हर शब्द की गहरी फिलोसॉफी जो है ना भी समझे, तो भी आवाज़ में एक अलग ही गंभीरता है. लता जी की शास्त्रीय नींव, उनका कंट्रोल, उनका साफ उच्चारण और एक शुद्ध सुर जो देर तक टिकाए रखने की काबिलियत, इसी ने उन्हें भजनों को इतना शक्तिशाली बनाया. मीरा के जो भजन हैं, गायत्री मंत्र, गणपति की आरती, कितने घरों में आज भी सुबह लता जी की आवाज़ से ही होती है सुबह. इसलिए उनकी आवाज़ सिर्फ रोमांस या फिल्मों तक सीमित नहीं थी. उन्हें वो एक पल में बिल्कुल पास लग सकती थी और अगले ही शब्द में लगभग विशाल. और शायद महान गायक यही करते हैं ना, वो सिर्फ एक कंपोजिशन नहीं गाते, वो कमरे का जज्बाती तापमान बदल देते हैं. तो चलिए ये सुनते हैं.

Welcome back to Sunzara Radio 99.9 FM, HD 401.9 FM, or 4090 AM. मैं हूँ प्राची और हाँ अभी तक मैं हूँ yes. और हाँ, मुझे इतना सारा कुछ बताना था, मुझे टाइम ही इनफ नहीं लग रहा था. खैर, कुछ और बताती हूँ. और अब हम आज के स्पेशल के ख़त्म होने के बहुत करीब आ गए हैं, लेकिन दो गाने ऐसे हैं जिन्हें छोड़ नहीं सकती थी. एक है अजीब दास्तां है ये, है ना, 1960 का दिल अपना और प्रीत पर आई. मीना कुमारी जी पर ये फिल्म आया था ये गाना. संगीत था शंकर जयकृष्ण जी का और बोल थे शैलेंद्र जी के. क्या लाइन है अजीब दास्तान, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी सच में बिल्कुल ऐसी ही होती है. हमें नहीं पता एक रिश्ता कहाँ जा रहा है, हमें नहीं पता कोई हमारी ज़िंदगी में क्यों आया, हमें नहीं पता कोई क्यों चला गया. और कभी कभी हम अपने ही दिल को नहीं समझा पाते, है ना. और एक और प्यारा सा सॉन्ग है, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा. तो यस, आप ये गाने एंजॉय करिए और आई बी बैक सून.

वेलकम बैक टू सनसेरा रेडियो 99.9 एफएम और शिफो 101.9 एफएम ऑफ 4090 एएम। मैं हूं प्राची और बस ऐसे ही हम आ गए हैं आज के सनसेरा के आखिरी पलों में। आज हमने लता मंगेशकर जी का सफ़र देखा, इंदौर की एक छोटी सी हेमा से एक 13 साल की बेटी जो घर चला रही थी, एक पतली आवाज़ जिसे मना कर दिया गया से लेकर स्वर कोकिला तक, है ना, संघर्ष से पहचान तक, ब्लैक एंड वाइट सिनेमा से आज के बॉलीवुड तक, रेडियो से रिकॉर्ड्स, कैसेट सीरीज और स्ट्रीमिंग तक। और इस सफ़र में देश ने उन्हें हर बड़ा सम्मान दिया। 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न, देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, है ना। पीढ़ियाँ बदली, टेक्नोलॉजी बदली, सिनेमा बदला, संगीत बदला, लेकिन एक चीज़ वही रही। वो आज 6 फरवरी 2022 में 92 साल की उम्र में लता जी ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन क्या वो सच में चली गई? मुझे नहीं लगता। संगीत ऐसे काम करता है, क्योंकि जब लग जा गले कहीं बजता है, जब अजीब दास्तान है ये किसी पुरानी याद को जगा देता है, तब प्यार क्या तो डरना क्या किसी कमरे में अचानक जान भर देता है ना। शायद यही असली संगीत की विरासत है। आपकी आवाज़ बंद हो सकती है, लेकिन अगर आपकी आवाज़ लोगों की यादों में रह गई तो आप कभी गाना बंद नहीं करते। तो आज उनकी जन्मतिथि पर हम अलविदा नहीं कह रहे हैं, हम बस कह रहे हैं शुक्रिया लता जी, गानों के लिए शुक्रिया, यादों के लिए शुक्रिया, जज्बातों के लिए, आवाज़ देने के लिए। और अब एक ऐसा गाना जिसे सुनते ही शायद आप भी एक सेकंड के लिए चुप हो जाएंगे। 1964 का वो कौन थी, संगीत मदन मोहन जी का और बोल राजा मेहंदी अली खान साहब के, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे, सेम वाइब, सेम फील, एंड सी यू ऑल ऑन ट्यूसडे ऑन सनसेरा रेडियो 99.9 एफएम। और हाँ, उससे पहले, गाना बजने से पहले आपको लास्ट चीज़ बता दूं कि इट्स ऑलमोस्ट टाइम, है ना, डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन एट 5:30 ऑल्सो ऑन रेडियो नायराज, अनुपम खेर जी एंड स्वरूपा संपत जी जॉइनिंग वैष्णवी टू टॉक अबाउट देयर अपकमिंग प्ले जाने पहचाने अनजाने, एंड येस यू कैन कॉल इन एंड टॉक टू दैम लाइव, सो स्टे ट्यून, दे विल बी हियर वेरी सून।

0: Hello everyone, you are listening to Radio Naira at 99.9 FM HD4, 101.9 FM and 1490 AM पर और ये है आज का Radio Naira special episode and I am your host Vaishnavi. Well, आप सब लोग इंतजार कर रहे थे इस वक्त का जहाँ पे है हमारे साथ two beautiful and wonderful artist with us. So let's not delay further and let's do a warm welcome to Radio Naira special with me. And aaj hamare studio mein hai extraordinary artist jinke safar mein cinema, theater aur life ki bahut khoobsurat stories hai. Sabse pehle swagat karte hain Anupam Kher ji sir ka jo ki hai, and I'm so nervous and I'm so excited aapka परिचय देते हुए जिनका करियर और 550 से भी ज़्यादा फिल्म्स जिन्होंने की है, सारांश की गहराई और डी डी एल जे की अनफॉरगेटेबल फादर कर्मा और क्या कुछ नहीं. वेल, उसी के साथ पद्मश्री और पद्म भूषण के एक्टर, ऑथर और एक्टिंग टीचर. वाओ, क्या बताएं, आपका सफ़र एक्सपीरियंस के साथ क्यूरियासिटी को भी जिंदा रखता है एंड इट्स सो इंस्पायरिंग फॉर ऑल द यंग एस्पिरेंट्स. थैंक यू सो मच एंड रेडियो नायरा में आपका दिल से स्वागत है अनुपम सर.
1: थैंक यू.
0: वेल,
1: अच्छा लगा. थैंक यू.
0: और हमारे साथ है स्वरूप संपत जी, मिस इंडिया 1979 और ये जो है जिंदगी की बिलव्ड रेनू और आपने टेलीविजन पर हमें हंसाया है और एजुकेशन में यंग पीपल को अपनी आवाज और कॉन्फिडेंस ढूंढने में हेल्प किया है.
2: दैट्स राइट.
0: वेलकम टू रेडियो नायरा स्टूडियो. वी आर सो हैप्पी टू होस्ट यू टुडे.
2: थैंक यू सो मच. आई एम सो हैप्पी टू बी हियर.
0: ऑलराइट. वेल, और हमारे साथ है अरविंद महाजन जी, जो हमेशा की तरह अमेजिंग इवेंट के साथ जो लेके आते हैं. सो वेलकम अरविंद महाजन जी, जो आप लेके आए हैं जाने पहचाने अनजाने शो.
3: थैंक यू वैष्णवी जी. थैंक यू टू रेडियो नायरा एंड वी आर एक्चुअली ब्लेस्ड टू हैव दिस ग्रेट आर्टिस्ट विद अस टुनाइट एंड विद ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो नायरा. सो आई विल लेट द आर्टिस्ट स्पीक टुडे.
0: वंडरफुल. सो आज की मुलाकात का खास मौका है जहाँ पे जाने पहचाने अनजाने, विच इज़ अ हिंदी प्ले और जिसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन साथ में स्टेज के पीछे की स्टोरीज और लाइफ लर्निंग और आप दोनों की क्रिएटिव सफ़र के बारे में भी ज़रूर हम बात करेंगे आज. तो लिसनर्स, आई नो यू ऑल आर लिसनिंग, और अगर आपको बात करना है अनुपम खेर सर से या फिर स्वरूप मैम से तो प्लीज़ कॉल करिए एट 919-999-8595 पर. सो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एंड टाइटल सुनते ही जाने पहचाने अनजाने, इतनी क्यूरियासिटी आ गई है सब में कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं इस टाइटल को लेके. एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये कुछ पहचान रिलेटेड है. आई डोंट वांट टू बी अ स्पॉइलर और मैं नहीं चाहूँगी कि आप उसके बारे में ज़्यादा बताएं, लेकिन ऑफकोर्स सारे लिजनर्स वॉन्ट टू नो कि जब आपने पहली बार इस प्ले की स्टोरी आपने पढ़ी तो आपको वॉट एक्साइटेड इनफ टू यू, यू नो, कि आपने कहा कि यस, मैं इस कहानी का हिस्सा बनना चाहता हूँ या हिस्सा बनना चाहती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद अनुपम सर.
1: मैं हर 10 साल में, पहले तो आपके सभी श्रोताओं को, आपके सभी लिसनर्स को मेरा और स्वरूप जी का बहुत बहुत प्यार, और हमारे नेशनल प्रमोटर राजेंद्र जी का भी प्यार. पोस्टर में अनु मलिक जी का नाम नहीं है, अनु मलिक जी इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं. हाँ, इस तरह राइट की साइड पे मुझे अपना ही नाम दिखाई दे रहा था. तो वी आर वेरी हैप्पी टू बी हेयर. आई राले ऑल्सो हैज अ कनेक्शन विद मी. किरण्स यंगर सिस्टर स्टेज इन राले एंड हर हस्बैंड जितेंद्र पन्नू स्टेज हेयर. हमने पहले सालगिरह किया था राले में, उसके 7-8 साल बाद हमने मेरा कुछ भी हो सकता है, मेरा वन मैन शो जो है, और फिर नीना गुप्ता के साथ मैंने किया था मेरा मतलब नहीं है, और अब जो है हम जाने पहचाने अनजाने. आफ्टर आई थिंक एक एक्टर को, खासकर फिल्म वाले एक्टर को, थिएटर जिंदा रखता है और हम बेसिकली थिएटर से ही हैं. थिएटर से ही हमने अपनी पहचान बनाई है. और जब मैंने गजेंद्र अहिरे, जिन जो कि इस प्ले के राइटर डायरेक्टर हैं, उनसे कहा कि मैं एक ऐसा प्ले करना चाहता हूं जिसमें ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हों और रिश्तों से जुड़ी हुई चीज़ें हों, तो उन्होंने कहा मैं एक मराठी प्ले कर रहा हूं, उसकी रिहर्सल है, फाइनल आज, कल शो है, तो आप आके देखिए. शेवया चिशिंगा, उसका मतलब था ड्रमस्टिक मराठी में उसका नाम शेवया चिशिंगा है. मैंने वो रिहर्सल देखी तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा प्ले. फिर ऑफकोर्स वी हैव अडेप्टेड इट टू हिंदी. उसमें म्यूजिकल नहीं था, ये म्यूजिकल है. उसमें डांसर्स नहीं थे. सो वी हैव ट्राई टू डू अ ब्रॉडवे म्यूजिकल फ्रॉम इंडिया एंड वी आर वेरी हैप्पी. जो पिछले हमने जो 10 शोज किए हैं उनका रिस्पॉन्स जो है बहुत ही बढ़िया स्मैश इट आया है. सोल्ड आउट शोज हैं एंड वी एक्सपेक्ट that Arvind ji and your team and everybody's team will make this play also a sold out show in Raleigh
0: mein to hoga hi. Arvind ji leke aaye hain to definitely. So ma'am, aur aapke liye wo kaun sa, you know, the connection, the character or the story, kya particular emotion matlab aapko laga ki ye yes, this is what I want to do it.
2: Okay, so first I would like to say I'm so happy to be in Raleigh back again. I'd come back in 2001 with our production with Paresh Rawal and me, ShaadiHaiBarbadi.com. Then we did Kishan versus Kanaiya and Dear Father. It's lovely. I just love this place. And it's so much warmth over here. So I'm happy to be here. Well, it was so interesting is that since that play, you know, I hadn't done anything. And then one day I get this call from Anupam ji and he says, Swaroop, ek play hai, aap karengi mere saath. And I am like 23 years have gone since I've done a play. Can I do it? And he says, think about it, see it, look at it, tell me. Well, I went and saw the play and immediately I said I loved it.
1: Yeah.
2: I mean, whatever it was at that. I mean, now we've changed a lot and made
1: but
2: it better.
1: But even the mool mein bahut achha tha.
2: The funny thing is, I remember I said, I'll call you tomorrow. And then I was so nervous. And I didn't call him for a whole week. And he calls, sends me a voice message saying, Swaroop ji, aap to aisi na thi. Then I said, no, I'm going out of town. I'm coming back. I'll call you. I called him and I said, look, I'm not going to think about it. I'm just going to do it. And I am so happy that I'm doing it. It's an incredible character that I'm portraying. Main sab to nahi bata sakti radio pe. You just have to come to watch it. And when you see what my character is, you'll just fall in love with her because she's so fantastic. Lots of layers and lots of things. And it's just the most perfect role to be doing.
0: Wonderful. And ab jaise aap story ko padhte hain tab aapke, you know, the overall thought process will be different, lekin jab aap rehearsal karte hain aur uske andar deeply you get involved with the character to aap thode nayi cheeze you figure out ki are aisa bhi hai isme, you know, some new learning.
1: Dekhiye jab play jab main khas kar as a producer main wo play chunta hu jo audience jisse relate kare, jo hamare jo hum stage pe dikha rahe hain wo apni rozmarra ki zindagi mein dekhein, rishton ke play. ये प्ले तीन जनरेशन का है. एक जनरेशन विच इज़ अबाउट 60, एक जनरेशन जो 40s में है, और एक टुडेज जेंसी. तो एवरीबडी रिलेट्स टू इट. एवरीबडी हैज़ द मॉडर्न वे ऑफ लुकिंग एट इट. आई हैविंग सेड दैट, आई थिंक जब आप स्वरूप जी का कैरेक्टर देखेंगे तो यू विल से दैट हाउ एम्पावर्ड दिस कैरेक्टर इज. बट प्ले को जब वो तो वेरियस स्टेजेस होती हैं. पहले रीडिंग करते हैं, फिर उसकी ब्लॉकिंग करते हैं कि कौन कैरेक्टर कहाँ से कहाँ जाएगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे. तो द मैजिक ऑफ थिएटर इज़ दैट वी डिस्कवर थिंग्स वाइल डूइंग इट. फिर लगता है कि ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे कर सकते हैं.
2: एंड आई जस्ट हैव टू से दैट इज इट वॉज सो इतना मज़ा आया अनुपम जी के साथ काम करने में बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस. इट्स लाइक, you know, things just flow. And you know, he comes up with great comic, and luckily we got this great friendship.
1: Yeah,
2: that, you know, when he says something I can pick it up. I may not be able to pick it up immediately sometimes I rehearse it and pick it up, but you know, it's fantastic. And he is like, what would I say, a huge pitora of ideas.
1: Yeah.
2: And it is fabulous working with him. Like, it's just super.
1: थिएटर की खासियत यही है कि आप 50 दिन 60 दिन रिहर्सल करते हैं. और मैं चूंकि काफी फिल्मों की शूटिंग कर रहा था तो इन्होंने तो आई थिंक 3 महीने रिहर्सल की थी.
2: Yes.
1: और फिर मैंने धीरे-धीरे
2: बाद में. One thing I wanted to say, अनुपम जी, is like शेक्सपियर ने प्ले लिखा, जो हम देखते हैं वो शायद ओरिजिनल पोर्टफोलियो नहीं है वैसा ही हमेशा एक्टर्स एड टू द स्क्रिप्ट इट्स लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट बट टू दैट वी एड यू नो
1: बट बीज में बहुत ताकत है ना अगर बीज ही अच्छा नहीं है तो आप उसको कितना पानी दो कितना धूप दो वो नहीं पनपता
2: unless the main thing is not
1: And then you bring in your own experience and Swaroop will say, Meghna will say that maybe we should do it like this.
2: Yeah.
1: But the first day when we were having the premiere at Tata Theatre, we were all nervous because phir uska faisla to audience hi karti hai.
2: Naturally.
1: You know, cinema mein zyada difference ye hai ki cinema ka par, aap log alive nahi hote wahan par. Yahan koi retake nahi hai. But ye pehle din se hi, phir The idea of bringing Anu Malik ji was, I thought that, and Anu Malik ji ne kabhi iska, kabhi theater ke liye to music diya hi nahi hai.
0: Yeah.
1: To unhone kaha main kya karunga? To maine kaha chaliye phir rehne dete hain. To within 30 seconds he called back. He says, nahi nahi aap mujhe bataiye to sahi kya karna hai. Maine kaha aapne bol diya main kya karunga to phir main rehne dete hain. Then he got involved and I must if I sang for the first time and that was.
2: I have to tell that. Can I tell that?
1: Please, of course, all yours.
2: Of course, you all will think there's one fan club. And yes, there is a fan club. But so we had this fantastic singer, Shan, doing it, the song.
3: Wow. Yes, Shan, okay.
2: Which is there. It's not that it's not there. It's there.
1: It's in the album.
2: Just 2 days before the main show, I mean, the opening night, you know, he realized that Shan has done it smiling.
3: Mm-hmm.
2: But he, as an actor, doesn't want to do it smiling. So you realize that when you sing a song smiling and you sing a song with, you know, emotions and sadness and happiness, it's different.
0: Yes.
2: So guess what this guy does, Anupamji? He goes and records it in his own voice.
1: I'm not a trained singer. Yes.
2: Yeah, but, you know, it's beautiful because he's bringing off different type of emotions, you know.
0: Absolutely.
2: And...
0: Yeah.
2: I am like jaw drop. I'm thinking, wow, this guy works so hard, you know, in spite of having worked for so many years, he just doesn't sit back.
1: मुझे लगा कि मुझे ये भी लगा स्वरूप जी कि मुझे लगा कि पहला ओपनिंग एक्ट है जिसमें गाना है and I'm lip syncing Shan's voice. Shan की वॉइस जग जाहिर है.
2: Yes.
1: तो मुझे लगा पहला ये नोट जो है फेक लगेगा कि अनुपम खेर मुंह चला रहे हैं और आवाज शान की है. So I had no means I sing in my home or something.
2: Oh
1: like
2: yes,
1: that.
2: In the car too.
1: In the car too. But the joy of singing in a theater is that the melody is not important; the emotions are important.
0: Right, perfect.
1: So and today and so I was very lucky that and we did not tell Anuji that I'm doing it. I said, कर लेते हैं
3: अच्छा
1: और उसके बाद फिर अनु जी को वीडियो भेज देते हैं ये ऑडियो भेज देते हैं एंड इसे अनुपम जी आपने तो ही इज ऑलवेज वेरी एनकरेजिंग आपने तो कमाल कर दिया एंड नाउ दिस सॉन्ग इज बिकम क्वाइट इंटरेस्टिंग वी हैव अ सॉन्ग बाय अनदर सॉन्ग बाय अ वेरी वेरी टैलेंटेड मराठी सिंगर एंड हमारे जो
2: सुखविंदर
1: जी उनका गाना है बड़े पॉपुलर गाने हैं बहुत अच्छा इट्स वेरी गुड यू पीपल ऑफ राले विल लव it because I see Raleigh people happy people somehow because the city is so beautiful I came
2: so
1: here a long time back I had great memories of coming to this city with my friend Satish Kaushik so we stayed at my brother-in-law's place so bahut saal pehle ki baat hai it's I think in 94-95
2: okay
1: to main aur Satish Kaushik pajama kurta pehen ke yahan ki sadkon pe ghoom rahe the
0: my god
1: to ha तो थोड़ी देर में पुलिस आ गई किसी ने इन्फॉर्म कर दिया कि दो अजीब से लोग पजामा कुर्ता पहन के यहाँ पर घूम रहे हैं और हम मोबाइल तो हमारे पास था शायद नहीं उन दिनों मोबाइल भी नहीं था उन दिनों और हमारे पास एड्रेस भी नहीं था मेरे ब्रदर इन लॉ का तो क्या वेर आर यू गोइंग हमारी अंग्रेजी भी कोई इतनी कमाल की नहीं थी इट वाज क्वाइट फनी देन वी स्टॉप्ड एट द शॉप एंड देन वी गॉट इट सो अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक एवरी places audience has really welcomed this play very very much very brilliantly very beautifully and the end result has been very good we did the 25th show 4 days back now we are this Raleigh will be a 27th show
0: wow
1: so that's the joy of this
0: That's so amazing. So आप हर बार जब ये शो कर रहे हैं, 24, 26, 27, it's like a very good number to talk about.
1: We'll be talking to you when we will be in the 500th show.
2: Yes,
0: absolutely. Touch wood.
2: Yes, of course.
1: My solo play that I've done, we have already reached 505 shows in the last 20 years. And we just play the way people love it. Also, they take home. Yeah, बहुत सारे plays आते हैं, sing with great respect for singers who come, etc., etc. It's an entertaining night. You know, we listen to the song, we listen to the thing. This is something people take back home.
2: Right. This people. Is going to move you and make you look at what's your life about.
1: And in an entertaining manner.
2: Yes, you and an laugh. Absolute yeah. entertaining manner.
3: So one thing I would like to ask you both, right? As I sell tickets to people and talk to a lot of people in town. So, ek hota hai logo ke प्रीकंसीव नोशंस की वजह से अपने एक्सपीरियंस की वजह से कोई भी चीज़ जब खरीदते हैं तो अपने एक्सपीरियंस की वजह से खरीदते हैं. फैक्ट नहीं क्या है वो उनको पता नहीं है, क्या था वो उनको मालूम होता है. तो वो जो नाटक उनके दिमाग में है, जो हम लोग के देखे हुए हैं, जो ये जो है ज़िंदगी देखे हुए हैं, तो उस साइब से वो कहते हैं कि हम म्यूज़िक तो समझ में आता है, हमें नाटक समझ में नहीं आता. तो और आप लोग फिल्म भी करते हैं, थिएटर भी इतना देखा है, और आपने इतने आर्टिस्ट वैसे आपने कहा 500 शोज किए हैं, 555 मूवीज़ किए हैं, तो इसमें अपनी जो रैले की ऑडियंस जिनको थिएटर की इतनी आदत नहीं है, क्योंकि ये सब लोग यहाँ पर अपने रोजी रोटी जमा करने आए थे, तो उनको क्या कहेंगे कि कहाँ से निकल के अपना ये शौक निकालें जो इस थिएटर में आए.
1: पहली बात तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने इंडिया से निकल के यहाँ तक आने का रिस्क लिया है तो यहाँ तो अपने घर से आके थिएटर तक ही आना है.
3: बिल्कुल
2: बिल्कुल. Right.
1: उन्होंने कभी ये थोड़ा सोचा था कि मैं अमेरिका आ जाऊँगा, फिर देखूँगा क्या होगा, फिर क्या होगा. ये आई एम श्योर द टिकट्स आर नॉट ह्यूमंगसली एक्सपेंसिव. द बॉडी ऑफ वर्क ऑफ एन एक्टर इज देयर, द बॉडी ऑफ वर्क ऑफ एन एक्ट्रेस इज देयर. शी इज डॉक्टर स्वरूप संपत, द काइंड ऑफ वर्क शी इज डूइंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. समटाइम यू हैव टू कम एंड वॉच द प्ले, समटाइम यू हैव टू एक्सपेरिमेंट द प्ले, समटाइम यू हैव टू लिव लाइफ.
2: मैं तो ये कहूंगी ये जरा भी रिस्क नहीं है. मैं तो फॉरगेट अनुपम जी, बिकॉज ही इज सो हम्बल, एंड आई एम सेइंग मैं गारंटी देती हूँ, इफ यू डोंट लाइक इट यू कैन कम एंड यू नो टेल मी, बट आई एम गारंटीइंग इट यू आर
1: गोना लव इट. इफ यू डोंट लाइक इट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर टेस्ट.
2: Yes, but I'm guaranteed. सवाल ही नहीं उठने वाला. I'm telling you, मेरी guarantee है. आप आइए, you're gonna laugh, you're gonna dance, you're gonna go back singing these songs, you're going to go back singing, saying some of the dialogues. वो मेरी guarantee है.
3: नहीं, actually इतनी बार मैंने वो ऐड प्ले किया तो वो दिमाग में वो गाना बस गया, इनका जाने पहचाने अनजाने. तो यूनिक चीज़ तो ये होगी ना, हम अनुपम जी को भी सुनने वाले हैं.
2: yes.
3: चाहे वो लिपसिंग करें या असली में गा रहे हैं, वो हमें पता नहीं है, लेकिन हम सुनेंगे अनुपम जी.
1: गाना तो मैंने रियल गाया है.
2: रियली गाया?
3: हाँ. नहीं नहीं नहीं, स्टेज पे.
1: स्टेज पे
3: भी. फिर तो आप क्या सोच रहे हैं, जल्दी से पहुंचिए.
0: सर, वुड यू लाइक टू थोड़ा बहुत गुनगुनाना चाहेंगे कुछ भी?
3: Not, जन,
0: not
3: जाने.
0: Maybe the play song, but definitely.
1: I don't want them to not come to the play after they listen to me like this, because it's a completely different. It's not a kind of play ki baharo phool barsao mera mehboob aaya hai. It will relate to it only when they watch it on stage. And something we should leave very suspenseful. Dekhte kya kiya hai.
2: Right. Audience mein baithiye.
1: Haan.
2: Want to hear this.
3: और आपके साथ तो बड़ी बहुत बड़ी कास्ट भी आई है.
1: हम 25 पीपल टुगेदर, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, एंड मेघना जी, शी हैज अमेजिंग रिलेशन रिलेटिबिलिटी विद द कैरेक्टर अम्मा जी दैट शी प्लेड इन अ टीवी सीरीज. वी हैव माया, शी इज वेरी फाइन न्यू कम अपकमिंग एक्ट्रेस. विकास हैज डन अ लॉट ऑफ प्लेज विद अस, विकास रावत. श्रद्धा इज न्यू कमर. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक गजेंद्र रवि मस्ट टॉक अबाउट हिम, बिकॉज ही इज अ नेशनल award-winning filmmaker. And he is a very well-known Marathi literary figure. I think his work is very good. And I will also say ki Arvind Mahajan ne kuch soch ke is pe paise lagaye honge na. इतने सालों से अगर ये प्लान कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं, हमने ये आपको बताना चाहता हूँ कि हम किसी भी शो को प्रमोट करने के लिए किसी रेडियो स्टेशन में नहीं गए हैं, बिकॉज उसके बगैर हमने टिकटें फाइनल फुल कर दी थी, बट वी हैव कम हियर बिकॉज वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट एन इंडियन रन्स दिस रेडियो स्टेशन.
0: दिस इज द ओनली वन,
1: दैट्स व्हाई इट्स एन अमेजिंग थिंग एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. All of you are doing great work, and I always say that Indians out of India are more Indians than Indians in India, and that I say it with lot of joy because they are unofficial brand ambassadors of the country. It's or your title, the trivia that you want to maybe it will interest you is given to us by my wife Kiran. So once we had the play ready, we couldn't call it Shevaya Chishinga or drumsticks or something.
2: Moringa.
1: Yeah, so my wife said that what is it if it's to be translated the whole play in English, uska kya word hoga? So I said intimate strangers. It's about intimate, it's about strangers which are intimate but they are strangers. So she said jaane pehchane anjaane will be nice. And also to tell your audiences and to your listeners, even Dilwale Dulhaniya Le Jayenge title was given by Kiran.
3: नहीं थे.
1: हाँ नहीं ऐसा नहीं है, दो बीघा जमीन होते
0: पहले के टाइटल ही बड़े होते थे.
1: हम हराई प्यार के अभी अटेंशन स्पैन भी छोटा हो गया ना.
2: यस,
1: लोगों का अटेंशन स्पैन अभी पहले हम एक्चुअली मुस्कुराते थे, अब हम इमोजी में मुस्कुराते हैं. हम एक्चुअली हक करते थे, अब हम इमोजी का हक का इमोजी भेजते हैं. और आजकल की जनरेशन तो बहुत ही कुछ लोल पोल खोल धीरे धीरे धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, हम ऐसे बात करेंगे.
3: एक आपका बोरोलॉग जो आपने रील में डाला था खुद के बारे में,
1: प्ले इज अबाउट हम सब आपसे खुद हम सब अपने आप से बातें करते रहते हैं, खुद से बातें करते रहते हैं. लेकिन ये जो खुद जिसे हम सेल्फ कहते हैं कौन होता है? मेरे आपके हम सब के अंदर होता है. ये सब जानता है हमारे बारे में, हमारी सच्चाई अच्छाई बुराई चोरी चकारी मक्कारी दुनियादारी दिलदारी सब जानता है. ये हमारा आक्रमण भी जानता है और हमारा भगोड़ापन भी जानता है, सुख दुख जानता है, सुख चैन जानता है, खुशी नाखुशी जानता है. कहने का इतना सा छोटा सा मतलब है कि हमें खुद से ज़्यादा कोई नहीं जानता, आईना भी नहीं. आईने की अपनी एक मर्यादा होती है, जो दिखता है वही दिखाता है. सो इट्स बेसिकली अबाउट आवर ओन सेल्फ. एवरीबडी विल सी देमसेल्व्स इन द प्ले.
0: Wonderful. Sir, we will continue right after 1 minute break. We have lot many things to talk.
3: Yeah.
0: Yeah.

0: हेलो,
1: हाय,
0: हाय, किससे बात हो रही है हमारी?
1: आई एम कॉलिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क. आई एम रमिता
2: रमिता।
0: रमिता हाय
1: रमिता
0: रमिता
1: यस.
0: ओ रमिसा, हाय रमिसा, हाउ आर यू डूइंग?
1: आई एम गुड.
0: वेल रमिसा, वी हैव अनुपम खेर जी एंड स्वरूप जी, सो आर यू रेडी टू टॉक?
1: Yeah, I'm so excited.
0: Please go ahead.
2: Ramisa, nice to have you on the line. How are you?
1: Hello, sir.
2: Namaste.
1: Namaste. Oh my God.
2: Yes.
1: Yes, I'm not Indian, sir. I'm from Bangladesh, but I'm a
2: That's okay.
1: big fan of yours.
2: Okay, lovely.
1: Yeah, I have watched so many movies, and I'm a big fan of Hindi films also, and lots of actress, of course, especially up Akshay Kumar sir and star K Paresh
2: What do you
1: Rawal
2: do, Ramisa?
1: ji. I mean, lots of. So,
0: Ramisa, आप क्या करती हैं?
1: I'm not doing right now anything. I'm a housewife.
2: Okay, great, great, great talking to you. Take care of yourself and my love to your family, Sarupji's love to your family.
3: Lots of love to your family.
1: Oh, and sir, my father, my papa, he also big fan of yours. His name is Hasan. So he just say to hi him.
2: हाय हसन, आप कैसे हैं? आदाब, होप यू आर डूइंग वेल।
0: वेल, थैंक यू
1: थैंक
0: सो
1: यू
0: मच
1: थैंक
0: फॉर
1: यू सर.
0: कॉलिंग रमीसा, थैंक यू सो मच, कीप लिसनिंग टू रेडियो नायरा, बाय बाय।
1: थैंक यू सर.
0: तो ये थे रमीसा, एंड शी इज सो एक्साइटेड सर टू
2: यस
0: टॉकिंग टू। आई थिंक
2: यस
0: एवरी
2: यस
0: वन इज सो एक्साइटेड, मैं खुद एक्साइट हो गई आपसे बात करते करते। तो और बताएं सर, लाइक यू नो व्हाट यंग पीपल
2: आप कब आई
0: विल
2: यहां पर इंडिया से?
0: वेल मैं
2: अपने
0: आई,
2: बारे में बताइए।
0: इट्स ऑलमोस्ट 3 इयर्स
2: हाँ
0: मैं इंडिया में हैदराबाद से,
2: हाँ
0: एंड देन आई मूव्ड हियर.
2: यस आई
0: अब
2: डिड अ
0: मैं
2: वेरी
0: यहाँ
2: वेरी फेमस दैट पर्टिकुलर पोर्शन बिकेम वेरी फेमस कार्तिकेय 2, माय डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा,
0: एब्सोल्युटली सर,
2: दैट बिकेम वेरी वायरल। मैं आपको
0: यस,
2: दिखाऊंगा
0: बहुत
2: बहुत।
0: अच्छी मूवी है वो, और
2: हाँ
0: मैंने देखी है वो
2: अभी आई एम
0: मूवी
2: वर्किंग विद
0: ट्वाइस एंड
2: प्रभास इन अ फिल्म कॉल्ड फौजी।
0: फॉजी.
2: या सो दैट्स इंटरेस्टिंग।
0: हाँ सर,
2: वेरी
0: हाउ
2: गुड,
0: इज योर एक्सपीरियंस विद तेलुगु
2: वेरी गुड।
0: मूवीज?
2: माई
0: लाइक
2: डिड लॉन्ग टाइम बैक, अबाउट 35 years बैक, आई डिड अ फिल्म कॉल्ड तिमुर्तिलु।
0: त्रिमूर्तुलु.
2: तिमुर्तिलु, दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्म। एंड नाउ आई थिंक इट्स नथिंग इज दिस डिमार्केशन ऑफ तेलुगु फिल्म, तमिल फिल्म, एट्सेट्रा, आई गॉन नाउ इट्स ऑल इंडियन फिल्म्स। And the
0: राइट
2: kind of work that I think they are doing is phenomenal. It's very good, and we are very happy to be. I'm very happy personally to be part of these films.
0: एब्सोल्युटली सर, आपने तेलुगु में किया है, तो आपने तेलुगु थोड़ा बहुत, डिड यू स्पीक तेलुगु
2: I
0: व्हेन
2: do. I
0: डूइंग
2: did that. I have the only
0: आपका
2: language that I have not done is in Gujarati.
3: गुजराती? जस्ट अ
2: बाकी मैंने सब
3: मिनट.
2: मलयालम,
0: ओह
2: तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगाली, ये सब फिल्मों में काम किया है। हाँ,
4: और कल गुजराती बहुत आएंगे फ्राइडे में।
2: हाँ, तो वो तो इनके लिए आ रहे हैं, स्वरूप जी के लिए, स्वरूप जी के लिए, परेश जी के लिए। दे विल मिस परेश जी ऑन स्टेज, बट वी विल ट्राई एंड कॉम्पनसेट। आई विल ट्राई एंड कॉम्पनसेट फॉर दैट। एंड हर नेम इन द प्ले इज मिसेस देसाई, मिसेस विमल। यही सुनना चाहते
4: तो गुजराती महंगा आपने सुन लिया।
3: आप प्लीज आवानु बोलता नहीं, यानी टिकट लाइज लो।
0: दिस लैंग्वेज हैज सम फ्लेवर, टू बी ऑनेस्ट.
2: फूड
0: गुजरात,
2: आल्सो हैज ग्रेट फ्लेवर।
0: या आई वाज किड व्हेन आई वाज इन गुजरात, तो
3: ओके
0: मेरी
3: यस
0: स्कूलिंग मैंने गुजरात, देन आई वेंट टू एमपी मध्य प्रदेश,
2: योर फादर
0: सो
2: वाज इन द
0: वाज इन
2: आर्म्ड
0: एयरफोर्स,
2: फोर्सेस। हां, आर्म्ड
0: सो
2: फोर्सेस,
0: ऐसा
2: दैट आई
0: पूरा
2: थॉट
3: वेरी नाइस.
0: तो
2: लवली लवली लवली। यस
4: मैं काफी लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, तो अरविंद जो है नेम गुजराती में काफ़ी फेमस है, तो मेरे को सब गुजराती में, अब गुजराती छो, तो मैं कह नहीं मैं पंजाबी, कहता पंजाबी भी ठीक है.
2: Not many people know that Swaroop Ji's father was a veteran. He used to run a place. आप बताइए.
3: He was the chief producer of the Indian National Theatre.
4: Oh.
0: Wow.
3: Yes.
2: और so, सारे जो अपने अरविंद जितने भी सारे जो एक्टर
3: अरविंद जोशी, प्रवीण जोशी, सरिता
2: जोशी, ये सब उधर से ही आए.
3: ऑल कम फ्रॉम देयर. इनफैक्ट डू यू नो दैट राजेश खन्ना जी एंड संजीव कुमार जी इवन वर्क्ड विद माय फादर.
2: यस,
3: व्हेन दे वर यंग एंड इन कॉलेज. दीना पाठक एटसेट्रा.
2: यस, दैट्स राइट.
4: सो दैट्स हाउ यू केम इन theater.
3: That's how I came in theater. In fact, at that time in the junior wing, there were Shafi, Namdar, Paresh Rawal, all of them working in the young group. And the older group had Praveen Joshi and Sarita Joshi. And that's how I started theater, because I was friends with them. And they said, chalo acting try karo. I said, okay, fine. And I became an actress.
0: But you are like from the education, if you look at, and from, you know, everything.
3: No. I'm very funnily was a college dropout. And then I became Miss India. I did films. I did Ye Jo Zindagi. And then I got married, had kids, and I started studying again at 38.
0: Oh, wow.
3: Right. And that's like, now
2: she's done a lot of big thesis, and now she's Dr. Swaroop.
3: And now I'm doing Jaane Pehchaane and Jaane 60+. I'm so excited.
4: Jaise Anupam ji kehte hain, right? Aap jante ho, pehchante ho, pata nahi. लेकिन अनजाने होते हो खुद से.
2: सही बात है.
3: एंड एज इज जस्ट अ नंबर, राइट? आई कीप सेइंग देयर इज अ 16 ईयर ओल्ड गर्ल इन मी.
2: ऑलवेज.
0: जाने पहचाने जब आपने कहा, जब आपने कहा कि मिरर हैज इट्स ओन मर्यादा, सो डेफिनेटली लॉट ऑफ पीपल दे टॉक टू मिरर.
2: या ऑफ कोर्स,
0: दैट इज सो पावरफुल व्हाट यू सेड.
2: मिरर हैज अ डिमार्केशंस ना.
0: इट या
2: इट डज नॉट, यू मूव अवे फ्रॉम इट एंड यू स्टॉप सीइंग योरसेल्फ.
0: राइट. आप क्या हो, शायद आपको मिरर में ही, यू नो, यू विल डेफिनेटली सी योरसेल्फ.
2: मेरा एक बड़ा फेमस गाना था ना डैडी फिल्म का, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे.
4: हाँ, बहुत प्यारा.
2: मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे.
4: या वेरी थॉटफुल सॉन्ग.
0: या एब्सोल्युटली. और बताएं आप शो के बारे में, इज इट फॉर एंटायर क्राउड, फॉर यंग पीपल?
4: वैष्णवी, अब हम शो के बारे में सिर्फ फ्राइडे को जाएंगे.
3: हम सिर्फ ये बता देते हैं कि दिस इज नॉट फॉर वन एज ग्रुप.
0: दैट्स व्हाट
3: इट इज, फ्रॉम everybody who can understand.
2: From 8 to 80.
3: Yes.
2: No, from 12 to 80.
3: Yes. 12 to 80.
2: Yeah.
3: Or plus.
4: 80 प्लस.
2: कुछ चीजें इतना तो लोग तेल भी नहीं बेचते जितना हम अपना नाटक बेचते हैं. तेल की भी इतनी ऐड नहीं करते, घी की भी इतनी ऐड नहीं करते, कपड़ों की भी इतनी ऐड नहीं होती.
3: I'm so happy to be talking about the play, because I am this pagal lady who's a pagal actress who's working after 23 years
2: with
3: the great superstar Anupam ji, and you know it's like I keep, you don't know, I get up every morning and say thank you. I think
2: she's
3: just
2: very generous. Right. She says every day to me, thank you. But Swaroop ji's graph from the day we started as rehearsals to now is phenomenal. Nobody was questioning the acting capabilities, but the persona change that has come into her,
3: yes,
2: is, it's so beautiful to see that. She was always confident, but you don't do theater for 22 years. It sort of frightens you to suddenly come, but you will watch her. You are coming to India after Malone.
0: Yes, definitely. I'm so excited about it.
4: Approach किया 22 साल बाद. तो
2: because I'm sorry, आप सवाल पूछ रहे
4: हैं. मैं ये पूछ रहा था कि आपने कैसे सोचा कि.
2: So I think the casting में आधा से ज़्यादा काम casting में हो जाता है.
4: Right.
2: You know, I and my director, we wanted a person who is not so sure about herself at this time.
3: Yeah.
2: Apart from the fact that we knew that she's a very fine actress and that she has capability, because, and also some more importantly, that somebody who is hungry to do things. When we took Neena Gupta ji before Mera Matlab Nahi Tha, she was hungry. She was looking for something like that. And I'm telling you on your radio station that when she go back within the next few years, I hope she has time for us to sort of keep doing it for all the plays.
3: You will always have the
2: time. It is always, theatre ki commitment bahut hoti hai ji. Unke ghar hai, unke bachche hai, unka apna school ka kaam hota hai, college ka kaam hota hai. You have to give four months of your life to then, and then now for the last 2 months, 1 month we are traveling.
4: Right.
2: So you are, you look for committed people. And I don't do theater to earn money only. I do theater to earn money also, but I also do theater because it's a, the most joyous thing to do. And we are 25 people. We try to sort of travel together as a family. We have made this family. Now there are so many people who have come for the first time out of India also.
0: Oh my God. And
2: they have come straight, our dancers, even a few actors.
3: Yes.
2: First time they have traveled
3: traveling abroad.
2: Mera first trip Maldives mein tha.
3: And inka USA hai, dekhiye.
4: Meghna ji kehti hai wo pehli baar US aayi hai.
2: She is very excited. Wo nikal jaati hai chutti wale din roz.
4: Aur mere liye, I think मैंने करीब I've done about this is my 8th play in last 21 years. This is the only play which has that big a cast.
3: Yes, I don't think
2: हमने मैंने भी आज तक कभी play नहीं किया. जो मैंने सालगिरह किया था उसमें सिर्फ मैं और किरण जी थे. कुछ भी हो सकता, सिर्फ मैं अकेला था.
4: अकेले थे.
2: मेरा मतलब वो मेरा मतलब नहीं था, उसमें तीन लोग थे. इसमें 25 लोग हैं. But you will see the
3: और सब अनुपम जी को कहते थे कि how will you manage it, cut it down, and he said no, I will go with my whole team, and that's what he's managed.
4: So क्योंकि राजेंद्र साहब ने मुझे फोन किया, कहते हैं कि ये गाना है. मैं कहा सबसे पहला क्वेश्चन ये मेरा था, कितने लोग हैं.
2: तो राजेंद्र का मैं वी मस्ट टॉक अप्लॉड आवर नेशनल प्रमोटर राजेंद्र हु हैज डन ऑल माय प्लेस. ही हैज ग्रेट फेथ इन टू सेल अ प्ले लाइक दिस विद सो मेनी पीपल. द लॉजिस्टिक्स आर प्रोडक्शन कंपनी पीपल हु हैव दे डन अ ग्रेट जॉब. दे हैव डन इट आल्सो बिकॉज़ देयर इज सो मच ऑफ जॉय इन इट.
0: Yeah.
2: You know, kaise, you make memories only by traveling together.
3: Right. Exactly. I've just done that video of the airport with our bags.
2: Yes.
3: Just look at the bags and you're like, oh my God.
0: Of course, 26 people and the bags.
2: And to travel it's, from one place to another.
0: It's difficult.
2: Touch would have been 7 shows baki.
3: Yeah, and Rajendra ji, we really need to thank him for that. Right. Yeah.
4: So, and I love the planned chaos.
2: Yeah, yes. Always. The perfection is very boring.
4: Yes.
2: It's the chaos which is very creative.
4: Yes. Yes.
0: बिल्कुल.
2: That's important. क्या सोच रही हैं आपके मन में, क्या चल रहा है?
0: नहीं, मैं सोच नहीं रही हूँ. मैं देख रही हूँ कि I mean one should have this passion of doing, and I'm just imagining how these 26 people all together is collaborating and you know doing it. So that's magical, I would say.
2: And the play, friends, सुनने वाले दोस्तों, राले मेमोरियल ऑडिटोरियम में हमारा प्ले है.
0: बिल्कुल.
2: और आपको टिकटें लेनी है तो टेक्स्ट करिए 3472057276 या 5712416235. आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा. नमस्कार. जय हिंद.
0: थैंक यू सो मच अनुपम जी, एंड थैंक यू स्वरूप जी फॉर बीइंग एट रेडियो नाइट, एंड थैंक यू अरविंद जी फॉर ब्रिंगिंग दिस अमेजिंग शो टू राली
2: एंड टू ऑल द स्पॉन्सर्स. वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्ले में, स्पॉन्सर्स का मिलना. थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस प्ले, एंड थैंक यू टू यू.
0: यू
2: मे थिंक दैट यू आर नर्वस, बट यू आर नॉट नर्वस, दैट्स योर वे, एंड थैंक गॉड यू आर लाइक दैट. आई मीन नॉट नेसेसरली जो अब दोस्तों आपके सामने आ रहे हैं. You are very real and you are very original. That's what
0: thank
2: is important.
0: Thank you, sir. That's that means a lot to me. Thank and you so much.
4: ये play पे हम एक awareness raise कर रहे हैं of awareness of water safety.
0: Absolutely.
4: So because our 60-70% of adults don't know how to swim, so we want them to just come to swim schools and enjoy that.
2: Wonderful. I will also tomorrow try and do that.
4: Awesome. So come to Safe Splash Swim School, and AKM Investments is the sponsor of the show.
0: Definitely. Thank you.
4: You
0: so
4: thank
0: much.
4: Thank you, Radio Rana. Thank you, Vaishnavi.
0: Thank you.
2: Thank you, Ji. God bless you.
0: Thank you,
2: Namaskar.
0: All right, guys. You are listening to Radio Naira at 99.9 FM HD4, 101.9 FM and 1490 AM. And this is your host, Vaishnavi.

पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए